मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के

0: बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार। विषय है मातृ प्रेम। आलेख और वाचक स्वर प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रोताओ, हमारी शास्त्रीय परंपरा में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम हर किसी ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। माता गर्भधारण कर 9 मास तक हमारी संरचना करती है और उसके पश्चात दूध पिलाने से लेकर भोजन, कपड़े

0: शिक्षा, दीक्षा सब कुछ माता की देखरेख में होता है। इसलिए मातृ प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। मां खुद गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। एक मां का उत्तरदायित्व निभाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें दुनिया भर की तमाम माताओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने घरों को देखें तो वहां पर माता की उपेक्षा उस घर को नरक स्वरूप बना देती है। जिन घरों में माता के प्रति अगाध प्रेम, निष्ठा, समर्पण, सेवा इत्यादि होते हैं, वे घर हमेशा स्वर्ग की भांति चमकते रहते हैं। किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी भाषाई क्षेत्र में चले जाइए, मां के लिए असंख्य कहानियां, पहेलियां, दोहे, गीत, न मालूम कहां कहां तक मां के औदार्य को कहने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे हमने माता के लिए विशेष कुछ नहीं किया, जितना भी हम करते हैं वह कम दिखाई देता है। मातृ प्रेम सर्वोच्च है। जो संतान अपनी मां से प्रेम करती है उसका भाग्य उज्जवल होता है। मां स्नेह की प्रतिमूर्ति है। मां ममता का गंगा जल है। मां एक अद्वितीय शक्ति है। इसीलिए हमारे यहां नवरात्रों में माता की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की लगातार 9 दिन तक समस्त भारत में पूजा अर्चना की जाती है, जो अपनी संतति को एक नई शक्ति से भर देती है और उसके विकास के लिए आशीर्वाद देती है। जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला होता है वे लोग कभी भी पिछड़ते नहीं हैं, वे लोग कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। जिन लोगों को मां का प्रेम नहीं मिलता वे लोग असंतुष्ट रहते हैं, वे लोग असफल हो जाते हैं अपने प्रयोजन में, अपने लक्ष्य में। उनके भटकने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो मातृभक्त होता है वो कभी भटकता नहीं है और ना किसी को भटकाता है। आज हमारे सामूहिक परिवार टूट रहे हैं, हम अपनी माताओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मां के त्याग और बलिदान का अनूठा और अनुपम उदाहरण है। एक मां जन क्रांति ला सकती है। एक मां अपने भीतर की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान कर सकती है। एक मां अपने देश, काल, पर्यावरण और परिस्थिति को बहुत ही सरलता से, सहजता से लेते हुए हर संघर्ष में विजय प्रदान कर सकती है। इसलिए मत भूलें कि मां का प्रेम सबसे ऊंचा है और हमें इससे वंचित नहीं रहना है। हमें अपनी मां की सेवा करनी है, हमें अपने मां के आदेश की पालना करनी है। जो ऐसा नहीं करते वे आधे अधूरे रह जाते हैं और कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसके संतान आधी अधूरी रहे। तो आइए हम भी संकल्प करें कि हम अपनी माता को कभी निराश नहीं करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी कही गई हर बात को स्वीकार करेंगे। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके भीतर शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा और आप जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करेंगे।
1: मातृ प्रेम, अभी आपने सुना ये आज का विचार, आलेख और वाचक स्वर प्रमोद कुमार शर्मा का था। ये आकाशवाणी बीकानेर का डोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहली प्रस्तुति अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में।

प्रत्येक पंक्ति में एक सुंदर शिक्षा है और यह भजन का आनंद तभी है जब इसमें दी गई शिक्षाओं को ध्यान से सुना जाए और अपने जीवन में उतारने का

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हमें लूटा करते हैं और हमें मालूम नहीं होता ये हमें लूट रहे हैं और हम इन्हें अपने साथ रखते हैं हमेशा। तो इन्हें पहचानना।

अनुपमा देशपांडे और साथियों के स्वर में आपने ये भक्ति रचना सुनी। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उषा सेठ का गाया सूरदास जी का ये भजन।

सूरदास जी की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 184 से दोहा संख्या 185 के अंतिम छंद तक का पाठ। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर का है।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आपने बालकांड के दोहा संख्या 184 से दोहा संख्या 185 के अंतिम छंद तक का पाठ सुना। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल

आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे शाम 7 बजे से मैच की समाप्ति तक। ये प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर और सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12:10 पर। ये दोनों कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

पुरानी फिल्मों से फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है स्वस्थ नींद के लिए योग। इसी के साथ ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता, संप्रेषण कौशल, परिश्रम की दिशा हो सही, खजुराहो मंदिर, इन सभी के बारे में लघु जानकारियां दी जाएंगी और फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी सोमा पांडे और दिव्या सारस्वत।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। समय रहेगा दोपहर 1:05। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान और उपलब्धियां, बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, महिला पशुपालकों के लिए खास, संपूर्ण आहार को भोजन में शामिल करें, बच्चों को कहानियां सुनाएं। इसी के साथ कुछ बातें रसोई की, कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे खुशबू हर्ष और रेखा आचार्य के साथ। भूले बिसरे गीत, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुनवाया जाएगा 9:30 पर। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए अहमद हारून कादरी का काव्य पाठ, समय रहेगा 8:30।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनिल सिंह की वार्ता। विषय है पराली का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन।
1: किसान भाई बहना राम राम। किसान भाई बहना आजकल अपन जकी खेती बाड़ी करा वह मैं आधुनिक तकनीक आधुनिक जकी मशीनरी है उन्हें काम धंधो करा हाँ। और वह मैं अपन ध्यान देवा कभी जकी फसलों री कटाई करा वह टेम अपनी जकी फसलों रो अवशेष है जको नीचे रो हिस्सो है वो अपनी मशीन ऊपर सू ज्यादा काटते हुए और अपने खेत में जकी फसल रो अवशेष है वो ज्यादा मात्रा में बच जावे। वे ने आपा काम में ही लेवा या वे ने जलावा या वे कहीं करा वे ने क्या आपा अपनी खेतरी मिट्टी में मिलावा।

वह जो उचित अनुकूल पर्यावरण प्रबंधन है वह आप किया करा वे बारे में बात करा कि भाई जकी प्राली है वह पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन किया करना चाहिए। तो किसान भाई बिना आप जकी प्राली रो प्रबंधन है वो करा तो आप ध्यान देवा कि भाई अपनी जकी फसल है वह आप जलावा नहीं। जलाने से क्या है कि आपनो जो खेतरी मिट्टी है वह उपजाऊपन है वो कम हो जाए और आपनो जो वायु प्रदूषण है वो बढ़े वैसे आपने मिनखा रहे में आपने पशुआ रहे में श्वसन संबंधित जकी हरी बीमारी है वो बढ़ जाए, हृदय संबंधी जका रोग है वो बढ़ जाए और आपने जका पर्यटक आयक रहे जिन्हें सू अपने आमदनी आयक रहे वह भी 25-30% जकी उन्हारे में भी कमी आ रही है। तो आप देखा कि भाई अपने जकी खेत्र में ही फसलों रो अवशेष है उन्होंने जलावा नहीं। फसलों ने जो जलावा वैसे मोटो होना रहे नुकसान करनी बात करें तो किसान भाई बहना जकी फसलों रो अवशेष अपन जलाए हैं वैसे उन फसलों रा जड़ तना और पतिया में जका संचित लाभदायक पोषक तत्व है वह नष्ट हो जाए और लाभदायक जका अपने खेत में मित्र कीट है वह भी जल राख हो जाए और अपने

0: वह उपजाऊपन है वो कम हो जाए और अपना जो वायु प्रदूषण है वो बड़े भैंसों अपने मिनखा रहे में अपने पशुआ रहे में श्वसन संबंधित जकी हरी बीमारी है वो बढ़ जाए, हृदय संबंधी जका रोग है वो बढ़ जाए और अपने जका पर्यटक आयक रहे जिन्हें अपने आमदनी आयक रहे वह भी 25-30% जकी उन्हारे में भी कमी आ रही है। तो आप देखा कि भाई अपने जकी खेत्र में ही फसलों रो अवशेष है उन्होंने जलावा नहीं फसलों ने जो जलावा भैंसों मोटो होना रहे नुकसान करनी बात करें तो किसान भाई बहना जकी फसलों रो अवशेष अपन जलाए हैं वैसों उन फसलों रा जड़ तना और पतिया में जका संचित लाभदायक पोषक तत्व है वह नष्ट हो जाए और लाभदायक जका अपने खेत में मित्र कीट है वह भी जल राख हो जाए और अपने नुकसान हो वैसा। तो अपन एडो काम नहीं करा जैसे वातावरण पे उल्टो असर पड़े और मोटे तौर से आप देखा कभी अपना जो पशुपालन है वह पे भी शारीरिक कमी रो असर पड़े। तो आप फसलों रो जो अवशेष है उन्होंने कदे भी जलार नष्ट नहीं फसल अवशेषों किसान भाई बना अपने खेत की जकी मिट्टी है वह नाइट्रोजन पोटास सल्फर जका पोषक तत्व है वह मिला करें और आप जकी अपना खेत फसलों रो अवशेष है वह जलाण रे बजाय आपां उन्हां रो सदुपयोग करा। सदुपयोग री किसान भाई बहना बात करा तो आपने जकी खेत जका फसल रा अवशेष है उन्होंने आपां छोटे छोटे टुकड़ा में काट जका खेत में है डिस्क प्लाऊ सो गहरी जुताई कर मिट्टी में मिला देवा। मिट्टी में मिलाने से आपने खेत री उर्वरा क्षमता है वह बढ़ जावे और आपने फायदा होवे। आप जे फसलों रो अवशेष है वो खेत में ही छोड़ देवा तो वह सो खेत की जकी मिट्टी है वेरी नमी मणि रहे और अपना जो भूमिगत जल है वह सतर में भी सुधार हो। फसल रे अवशेष रो उपयोग आप पशुआ रे चारा है उन्हारे बिछोने यानी बैठने रे जगह या फिर उन्हारो छपरो बनाने में ही भी काम में ही लेस कहा। फसल अवशेष ने आप कंपोस्ट खाते है जकी वेन भी मना सका हाँ। और बात करा पुआल रही तो पुआल रोज को उपयोग है वो सजावटी सामान बनाने में भी आप काम में ही ले सका हाँ। और किसान भाई बहना आप खेती बाड़ी से जुड़े रहा हाँ। और खेती बाड़ी में आप बात करा फसल रे अवशेष री तो ए भूसे से आप मशरूम जी जकी खेती है वह ज्यादा उत्पादन ले सका और वह बड़े क्षेत्र पर आप खेती बाड़ी ने बढ़ा सका सा। और आधुनिक युग री बात करा किसान भाई बहना तो जका फसलों रे अवशेष है वह सो आप कोई भी जका अपना पदार्थ है उन्हारी आप पैकेजिंग करानी वह में भी वह काम माई आया करे और फसल अवशेषों आप कागज उद्योग बायोमास आधारित जका पावर प्लांट है जैव एथेनॉल उत्पादन है उन्होंने भी काम में लियो जा सके है। और किसान भाई बहना देखा हाँ कि आधुनिक युग है और आधुनिक जकी तकनीक है उन्होंने भी अपना सका जी हाँ। आप बात करा तकनीक री तो सरफेस सीडिंग ऑफ वीट जकी तकनीक है वह आप अपना सका यानी जकी गेहूं री सतही बुआई कर सका ऐसो आपने फायदो ही फायदो है किसान भाई बहना। एमें की है कि आपने गेहूं री बुआई में समय और लागत दोनों में कमी आओगी और ए तकनीक सो आप गेहूं री बुआई और धान री कटाई एक ही समय कर सका हाँ। ये तकनीक सो जकी आप बुआई करा गेहूं री तो वे में आपने धान री कटाई रे बाद में गेहूं की बुआई कतर इंतजार कौन करनो पड़े। ये तकनीक सो जे आप गेहूं री बुआई करा और धान री कटाई करा तो किसान भाई बिना आपने जकी 650 रुपया प्रति एकड़ खर्चो आवे जो की है आप कटाई कर फिर बुआई करा वह तकनीक में जो खर्चो आवे वो सो 300-400 गुना ज्यादा है। तो आप जकी तकनीक ना अपनावा और अपने जो खेती बाड़ी में खर्चो कम भी करा और अपनी जकी पराली है वह भी सदुपयोग करा और आसानी से बुआई कर अपनी जकी खेती बाड़ी है वह में मुनाफा बढ़ावा सा।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आपने सुनी अनिल सिंह की वार्ता। विषय था पराली का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन। और आइए अब सुनते हैं लोक भजन।

0: कृष्णा व्यास के गाय इस लोक भजन के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य द्विपञ्चाशत्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय सम्पर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः। समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयानां शीघ्रनिवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे सर के ऊपर ईश्वर का हाथ, तो हमारे ऊपर दुख आने की कोई भी संभावना नहीं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के रूप में मना रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मान्यता ये भी है कि बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास रखा जाता है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप अन्न और जल का ग्रहण कर सकते हैं। विशेषतया जो अन्न की बात है वो मनाई की जाती है इस व्रत के अंदर। मान्यताओं के हिसाब से पूरे साल के जो एकादशी व्रत हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आज के दिन का व्रत कर लेने से हमें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है श्रोताओं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर किस हिसाब से बनी रहे, हमारे मन में उनका नाम हमेशा चलता रहे, जप चलता रहे। कभी भी ईश्वर ये नहीं कहते कि आप भूखे रहिए, प्यासे रहिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी आप करिए, लेकिन आप अपने मन के अंदर शुद्धि रखिए। आपके मन के विचारों में हमेशा पावनता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मन पवित्र नहीं है, पावन नहीं है, तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और अगर आपने बिना किसी भी लाग लपेट के, द्वेष भाव के, कोई भी कार्य आपने किया, किसी की भी मदद की आपने, कुछ भी कार्य किया आपने, तो उसके लिए ईश्वर हमेशा आपके साथ होंगे। और यही ईश्वर का साथ श्रोताओं हमें चाहिए। और कहा यह भी जाता है कि देखिए, जब अपन उपवास रखते हैं तो ये उपवास भी इसीलिए होता है कि हमारा जो शरीर है वो डिटॉक्स हो जाए, उसके अंदर जो भी जो अनावश्यक तत्व हैं वो बाहर निकल जाएं। क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं या हल्का भोजन लेते हैं, और ऐसे में हमारा शरीर की पाचन क्रिया जो है वो सही रहती है। और श्रोताओं, शरीर को सही बनाए रखने के लिए तो आप भी जानते हैं कि हमारे पास कितने सारे माध्यम हैं। व्यायाम है, योग है, और योग दिवस जो हमने अभी किस ही तारीख को मनाया है, तो केवल ऐसा ही नहीं है कि 21 तारीख को ही योग करना था। योग तो हमें आजीवन करना है, यानी कि रोज़ सुबह हमें योग का साथ लेना है। क्योंकि योग जो है, खासकर दैनिक योग, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करता है। और यही देखभाल, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम हर काम अच्छे रूप से कर पाते हैं, और फिर चाहे वो ईश्वर का ध्यान हो या अपने रोज़मर्रा के काम हो, अपने कार्यस्थल के काम हो। तो योग और उपवास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपवास का तात्पर्य है कि ऊपर के स्तर पर वास करना, यानी कि हरि के चरणों में, नारायण के चरणों में जब हम जाते हैं तो वो हमारा उपवास होता है। ऊपर के स्तर पर हम वास करते हैं, और योग के माध्यम से और उपवास के माध्यम से हम श्री नारायण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, और ये हमारे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

श्रोताओं, सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं आप और हम सभी के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। और देखिए, यही खास बात है कि जो 12 साल सुशासन, सेवा और कल्याण के रूप में सरकार ने हमें दिए हैं, वो अद्भुत हैं, बेमिसाल हैं। ऐतिहासिक वर्षों के पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान को संदर्भित करते हैं ये 12 साल। अगर हम बात करें उम्मीदों की, तो वो सभी उम्मीदें जो हमारी एक नागरिक होने के नाते थी, वो सरकार के द्वारा 12 साल में उन पर बेहतरीन काम किया गया। कल्याणकारी पहुंच नागरिकों द्वारा तक बनाई गई और इसके तहत 4.45 करोड़ नागरिकों को मासिक लाभ प्रदान किए गए। प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण और शहरी विकास के लिए सहायता शिविरों का आयोजन किया गया, उनकी शिकायतों के लिए शिविर लगाए गए और उनका सफलतापूर्वक समाधान किया गया। छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें हम बात करते हैं आवास योजना की, हर घर जल योजना की, उज्ज्वला योजना की, पालनहार योजना की, पीड़ित प्रतिकर सहायता की, यानी कि छोटी छोटी योजनाएं जो आम आदमी की पहुंच तक होनी चाहिए थी,

वो सभी सरकार के द्वारा इन 12 सालों में मजबूत स्तर पर, जमीनी स्तर पर ये काम करके इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, जिसके तहत पैदा होते ही बच्चे की संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी, उसके वजन, उसके हिसाब से उसका टीकाकरण, उसके हिसाब से उसका पोषण, कहीं बच्चा कुपोषित तो नहीं है, सारी की सारी देखभाल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत बालिकाओं को विशेषतया शिक्षा से जोड़ने का भी अभियान चलाया गया है। इसी के साथ साथ बाल विवाह निषेध की बात हम करते हैं तो वो भी सरकार के द्वारा एक योजना के रूप में चलाया गया है कि जहां पर भी कहीं पर भी कोई ऐसी हमें सूचना मिलती है तो हम तुरंत जाकर के संबंधित जो भी पुलिस थाना है वहां पर शिकायत कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप अपना एक सादे पन्ने पर एप्लीकेशन लिख करके डाल सकते हैं, चाहे आप अपना नाम लिखें या ना लिखें, वो नाम आपका उजागर नहीं होगा अगर आप लिख भी देंगे तो भी। आपको सिर्फ सूचना पहुंचानी है, आगे का काम अपने आप संबंधित विभाग कर लेगा। तो श्रोताओं, सरकार के द्वारा इतनी महती योजनाएं और उनकी पहल एक आमजन के लिए की गई है कि जितना हम बात करें उतना कम है। यही सरकार के 12 साल हैं, यही सुशासन है, यही सेवा है और यही कल्याण की बात है। और इसी से कहा भी गया है कि जब हाथ से हाथ मिलता है तो बात आगे बढ़ती है।

साथी हाथ बढ़ाना। श्रोताओं, ये साथ और ये हाथ जब तक हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी कार्य करना चाहें वो पूरा नहीं होगा। छोटी सी बात है कि अगर हम घर पर भी सारे कार्य अकेले ही करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, कार्यस्थल पर भी अगर हम सारे कार्य एक साथ करना चाहें, अकेले करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये साथ और ये हाथ हमेशा हमें चाहिए होता है। और यही बात है कि जब हम दैनिक कार्य करते हैं तो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें साथ की ज़रूरत होती है। और साथ की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जिनको अगर दूसरे लोग हमारा साथ देते हैं तो उनमें और सुधार आ जाता है, और यही सुधार हमारे काम में भी हमें दिखाई देता है। जब भावनात्मक सपोर्ट हमें मिलता है, कोई मानसिक रूप से हमें सपोर्ट करता है, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। और यही मन जब प्रसन्नता से काम करता है तो उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि हम एक न एक अच्छा काम ज़रूर करें, यानी कि रोज़ कुछ एक अच्छी आदत ऐसी बनाएं जिससे हमारे आने वाले समय में हमें सुधार की गुंजाइश दिखाई दे। छोटी सी चीज़ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं और अपने साथ, जो भी साथी हैं, उनसे बातचीत अवश्य करें। हो सकता है कि कहीं पर हम कुछ जरा सी गलती कर रहे हैं और उसके जरा से सुधार के होने से ही हमारी जो ये आदत है उसमें कहीं कुछ सुधार आ जाए और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। छोटी छोटी आदतें श्रोताओं जो हमें रोजमर्रा में काम आती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, हमने आपसे पहले भी बात की, स्वच्छता का ध्यान रखना, अपने भोजन और पोषण पर ध्यान रखना, ये हमारी सबसे बेहतरीन आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम इसमें सुधार लाने के लिए रोजाना प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम इस पर पार पा सकते हैं। आदत अच्छी होनी चाहिए और रोज़ एक आदत ऐसी होनी चाहिए जो हम कुछ दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें, जैसे कि हम किसी का सहयोग कर सकें। जरूरी नहीं कि आप

पैसों से ही सहयोग करें। आप अपने शारीरिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। आप सब साथी मिलकर के, हम सब मिलकर के किसी के घर में चिराग रोशन कर सकते हैं। किसी के घर पर अगर चूल्हा नहीं जला है तो हम उसे वो प्रबंधन दे सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं तो हम अवश्य ये सब काम करें, और नहीं तो शारीरिक श्रम तो देखिए सभी के पास है श्रोताओं, और ये श्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और सबसे खास बात ये कि जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, और इस जीवन को बचाने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं पर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि शुरू के जो समय होता है तुरंत राहत अगर मिल जाती है तो मोर देन 50% जो है जीवन बचाए जा सकते हैं। यानी कि जीवन देना भी हमारे हाथ में हो सकता है। हम कई बार सोचते हैं, देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, ये एक अच्छी आदत हमारे साथ में होनी चाहिए। कोई पशु पक्षी अगर हमें बीमार दिखाई दे रहा है तो उसके लिए भी हम उसे चिकित्सा तक ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लोगों का साथ हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जलाशयों की व्यवस्था, छोटे छोटे पलसिए लगाने की व्यवस्था, उनके लिए अन्न पानी की व्यवस्था हम कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं कह सकते आपसे कि हमें भोजन चाहिए, हमें भूख लगी है, हमें पानी चाहिए। हम कर सकते हैं। पेड़ पौधों को पानी देना हम कर सकते हैं। किसी रोते हुए को हंसाना हम कर सकते हैं। किसी चेहरे पर खुशी लाना हम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, वो सभी काम जो हम कर सकते हैं, ये अपनी रोज़मर्रा की आदतों में हम अगर डालें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए, समय के साथ साथ चलना भी एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आ सकता। और इसीलिए कहते हैं कि समय का पलड़ा हमेशा भारी होता है। कहने को भारी होता है लेकिन वैसे बहुत हल्का होता है। आप अगर चाहें तो चाह करके भी इसे नहीं उठा सकते, और लेकिन इतना हल्का होता है कि आपके हाथ से कब फुर्र होकर के निकल जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। तो समय का प्रबंधन, ये भी हमारी एक बहुत अच्छी आदत में शामिल होना चाहिए। ये चंद आदतें हैं जिनके माध्यम से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक हाथ से दान तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इस मामले में हमारे अगर बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में ये खासियत है, ये बीकानेरियत है कि हम कभी भी समाज सेवा में और दान पुण्य करने में पीछे नहीं रहते। आज का दिन भी विशेष है श्रोताओं दान पुण्य के लिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का विशेष दिन है आज। आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये दान हमारे स्वयं लौट करके हमारे पास ही आने वाला है, कहीं और नहीं जाने वाला। और कहते भी हैं कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें, ईश्वर अपने आप हमें उसके हिसाब से फल देते हैं। और हम ये देखते भी हैं कि जब भी हमने ईश्वर की तरफ आंख करी है, हमने देखा है उनकी तरफ निरीह निगाहों से, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो बस ईश्वर का साथ बना रहे और हम अपना कर्म करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में फिल्म का नाम था पतिता।

रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा गीत आपने सुना। आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म का नाम था ममता।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था ब्लैकमेल। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रफी और आशा भोसले की फिल्म का नाम था खानदान।
1: झटका

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान

0: से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में

0: उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
3: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड,

0: छत्तीसगढ़ और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts.

0: northeastern region during the next 2 to 3 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thanks, Shagun. All dailies lead with Iranian President Masoud Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose Parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day. Akashvani se pesh
2: hai. Medium wave 215.05 meter, arthat 1395 kilohertz, aur FM 101.6 megahertz par. ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हारून कादरी का काव्य पाठ। प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की है और संयोजन अमित सिंह का।
3: कुछ शेर मुलायजा फरमाए। करते हैं आगाज हम आज इस महफिल में, अब ये देखना है उतरते हैं किस किस के दिल में। ज़िंदगी में अक्सर वो आगाज़ होते हैं जिनके अंजाम देर से या नहीं होते। औरों की तकलीफ को देखकर जो खुश हो, औरों की तकलीफ को देखकर जो खुश हो, कुछ भी हो पर वो इंसान नहीं हो सकता। और लोग पूछते हैं मुझसे शोहरत पाने के तरीक़े, लोग पूछते हैं मुझसे शोहरत पाने के तरीक़े, ये अता है मेरे रब की मुकद्दर से मिला करती है। हद सागर पे तो जा पहुंचा इंसान और दिल की गहराई को है नापा किसने। और एक शेर देखिए कि एक चराग क्या जलाया उम्मीद का मैंने, एक चराग क्या जलाया उम्मीद का मैंने, सब हवाओं ने रुख मोड़े मेरी ही जानिब। और एक शेर देखिए कि दिमाग से सोचने वालों के लिए गुलजार है दुनिया, दिमाग से सोचने वालों के लिए गुलजार है दुनिया, और जज्बाती गर इंसान हो तो यकीनन दुश्वार है दुनिया। और शेर देखिए कि अपने दुख के बीज को खुद खाद पानी दिए जाते हैं, अपने दुख के बीज को खुद खाद पानी दिए

जाते हैं और ये सरसब्ज ना हो खुदा से उम्मीद किए जाते हैं। और एक शेर देखिए कि बिछड़ के रूह तेरे बदन से जब परवाज करे, बिछड़ के रूह जब तेरे बदन से परवाज करे, कर जाना ऐसा कुछ कि दुनिया तुझ पर नाज करे। और एक शेर देखिए दीपावली पे लिखा था मैंने कि मोहब्बत का एक दिया जलाया है मैंने भी, मोहब्बत का एक दिया जलाया है मैंने भी, और नफ़रतें सब जल जाएगी इसकी लौ में, नफ़रतें सब जल जाएगी इसकी लौ में। और शेर देखिए एहसासात के परों का एक परिंदा हूँ मैं, एहसासात के परों का एक परिंदा हूँ मैं, और इन्हीं से परवाज़ मेरी, इन्हीं से ज़िंदा हूँ मैं। और एक शेर देखिए कि वो इंसान गरीब नहीं जिसके पास पैसा नहीं, वो इंसान गरीब नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब तो वो है जिसे खुद पर भरोसा नहीं। अब एक नज़्म मेरा वतन, वतन की शान में एक मैंने नज़्म कही है, मेरे वतन अजीम की हर एक बात निराली है, मेरे वतन अजीम की हर एक बात निराली है, कभी होली ईद क्रिसमस और कभी दिवाली है, ना कोई और है मुल्क इस जैसा तहजीब में, ना कोई और है मुल्क इस जैसा तहजीब में, और त्योहारों की हंसी खुशी देखो क्या मतवाली है। और कहता हूँ कि गूथे हुए हैं एक माला में हर मज़हब के लोग यहाँ, गूथे हुए हैं एक माला में हर मज़हब के लोग यहाँ, हरे भरे इस पेड़ की देखो खिली हुई हर डाली है, हरे भरे इस पेड़ की देखो खिली हुई हर डाली है, और पर्वत सागर नदियों से प्यार के झरने बहते हैं, पर्वत सागर नदियों से प्यार के झरने बहते हैं, और सहराओं की धूप कहीं पर और कहीं हरियाली है, सब रंग हैं प्यारे इसके ये है सबका प्यारा देश, खेत खलिहान बागानों में चहुं और खुशहाली है, रंग नस्लों भाषाएं सब जुदा जुदा हों चाहे इसकी, एक ही सूत्र में बांधे सबको यही बात कमाली है, और नजरे बद से बचाना तू रखना इसकी अजमत को, नजरे बद से बचाना तू रखना इसकी अजमत को, और तू है सबका पालने वाला रब तेरी शान निराली है। और एक नज़्म कही है मैंने फ़नकार कि दिलों को जीत ले जो वो होता है फ़नकार, रूह से हो रोशन ख्याल वो होता है फ़नकार, और सच्चाई का साथ देता रहता मस्त मलंग, सच्चाई का साथ देता रहता मस्त मलंग, ऐसी सोच जो रखे वो होता है फ़नकार, कलम का साथी लिखे जो निर्भीक होकर, कलम का साथी लिखे जो बेखौफ होकर, शब्दों के मोती पिरोए वो होता है फ़नकार, लिखना हो या गाना हो या और कोई भी फ़न, अपनी ही धुन में रहता जो वो होता है फ़नकार, इतिहास गवाह है फ़नकारी ने जोड़े हैं दिल, मोहब्बत बांटता रहता जो वो होता है फ़नकार, और इज्जत सबको प्यारी, इज्जत जिसको प्यारी हो रखता है वक़ार, इज्जत जिसको प्यारी हो रखता है वक़ार, सबका चहेता प्यारा सा वो होता है फ़नकार। और मक्ता देखिए कि तेरे फ़न में भी होगी कभी तासीर हारून, तेरे फ़न में भी होगी कभी तासीर हारून, ज़हनियत से बढ़ता जाए जो वो होता है फ़नकार। और गज़ल देखिए कि एक खूबसूरत सी गज़ल हो तुम बारहा जिसे पढ़ने का मन चाहे, एक खूबसूरत सी गज़ल हो तुम बारहा जिसे पढ़ने का मन चाहे, और दिल में उतर जाना है एक बार तेरे करने पड़े फिर लाख जतन चाहे, और तुम्हारे लिए ही धड़कता है ये दिल, तुम्हारे लिए ही धड़कता है ये दिल, तेरे सीने में न हो मेरे लिए अगन चाहे, वफा का पैकर हूँ मैं ये जान लो तुम, बेवफाई का है ज़माने में चलन चाहे, एक बार आजमा के तो देखो कभी,

0: एक बार आजमा के तो देखो, कभी लुटे वफा में हारून तन मन धन चाहे। और ये गज़ल देखिए कि अल्फाज की अहमियत को समझता हूँ, अल्फाज की अहमियत को समझता हूँ और जज्बात की रूहानियत को समझता हूँ। लिखता हूँ प्यार मोहब्बत की बात में और उल्फत की रूमानियत को समझता हूँ। शाहों ने तो जीते होंगे किले और जागीरें, शाहों ने तो जीते होंगे किले और जागीरें, एहसास फ़कीरियत को समझता हूँ। और हर इंसान में छुपा हुआ बैठा है शैतान, हर इंसान में छुपा हुआ बैठा है शैतान, और इंसान की इंसानियत को समझता हूँ। मुझको उतना देना रब जिससे काम चले, मुझको उतना देना रब जिससे काम चले, अपनी सब ज़रूरियात को समझता हूँ। एक तू ही है सबका रब, तेरी आला शान, बस तेरी ही वहदानियत को समझता हूँ। और कहना तो बहुत है पर कहना नहीं आसान, हारून उनकी हिदायत को समझता हूँ। और एक नज़्म मैंने कही है उर्दू ज़बान पे, देखिए कि नज़ाकत और नफासत से लबरेज़ है उर्दू ज़बान, नज़ाकत और नफासत से लबरेज़ है उर्दू ज़बान, किसी गैर की नहीं है खालिस हिंदुस्तानी है उर्दू ज़बान। और जैसे मिल जाती है नदियाँ सागर में जाकर, जैसे मिल जाती है नदियाँ सागर में जाकर, और कई ज़बानों के अल्फाज समाए हुए है उर्दू ज़बान, कई ज़बानों के अल्फाज समाए हुए है उर्दू ज़बान। और शेर गज़ल और नज़्म की शक्ल में नहायत करीने से, शेर गज़ल और नज़्म की शक्ल में नहायत करीने से शायर के जज्बात को बयां करती है उर्दू ज़बान। और शेर देखिए कि मीर गालिब फिराक और बेशुमार शौरा के, मीर गालिब फिराक और बेशुमार शौरा के, कलम की ताकत बनी हुई है उर्दू ज़बान। और लिखने का ढंग जुदा जुदा होने पर भी, लिखने का ढंग जुदा जुदा होने पर भी हिंदी और संस्कृत से लिपटी हुई है उर्दू ज़बान। और उनकी लाइल्मी पर क्या ही कहें हारून, उनकी लाइल्मी पर क्या ही कहें हारून, जो ये कहते हैं कि मज़हबी है उर्दू ज़बान। कुछ कतार देखिए, अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी, उनकी शान में एक कता में आप, हज़रत इमाम हुसैन का मुक़द्दस रुतबा है, हज़रत इमाम हुसैन का मुक़द्दस रुतबा है, और अहले ईमान सब आपके लिए मरहबा हैं। तारीख़ ने देखी है न देखेगी ऐसी शहादत कभी, तारीख़ ने देखी है न देखेगी ऐसी शहादत कभी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का वो आला मर्तबा है। और एक कता देखिए कि महफिलें तो बहुत सजती है वहाँ जज्बात भी छलकते हैं, महफिलें तो बहुत सजती है वहाँ जज्बात भी छलकते हैं, हारून वहाँ ना जाना कभी जहाँ तुझको नहीं समझते हैं। और एक कता देखिए कि इंसान ही इंसान को अब खटकने लगा है, इंसान ही इंसान को अब खटकने लगा है, और मज़हब के नाम पे क्यों भटकने लगा है। और इंसानियत दिखाता है हर मज़हब का आईना, इंसानियत दिखाता है हर मज़हब का आईना, और क्यों ये शीशा आजकल चटकने लगा है। और एक कता देखिए कि जिस दिल में मादर वतन से प्यार हिंदुस्तान नहीं है, खुदा कसम उस इंसान का मुकम्मल ईमान नहीं है। और फोड़ दो हर वो आँख जो बुरी नज़र डाले वतन पर, फोड़ दो हर वो आँख जो बुरी नज़र डाले वतन पर, और ऐसी बुरी नज़र वालों से बढ़कर कोई शैतान नहीं है। अब एक कता देखिए कि सहमा सहमा हुआ सा हर तरफ माहौल है, सहमा सहमा हुआ सा हर तरफ माहौल है, आम आदमी का सदा ही उड़ता रहा मखौल है। और किसने सुना है कभी इसकी आवाज़ को, किसने सुना है कभी इसकी आवाज़ को, इसकी ज़िंदगी का कब कहाँ कोई मोल है।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुना अहमद हारून कादरी का काव्य पाठ, प्रस्तुति बरकत थानवी व्यास की और संयोजन अमित सिंह का था।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की गाई हुई ये गजल।

0: धनंजय भट्ट की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर सुबह के 9 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी

0: समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री

0: जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल निगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब समय है लोक संगीत का। आज के कलाकार हैं नजीर खां और उनके साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना नज़ीर खान और साथियों को। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उमंग। आज आप इसकी 1314वीं कड़ी सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक

0: एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर,

0: सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।

0: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे

0: भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं।
1: जी।
0: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
0: जी, और है। एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति।
0: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।

0: युगल और सहभागिता पद्धति।
1: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: की टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1314वीं कड़ी सुनी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आवाज़ें थीं सुकृति कक्कड़ और सिद्धार्थ महादेवन की। फिल्म का नाम था दिल धड़कने दो। अगला गीत आइए सुनते हैं। अंजलि फिल्म से

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भाग जॉनी, इस फिल्म का गीत आपने सुना सुनील कामत की आवाज़ में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

0: एतराज फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत आइए सुनते हैं, अमाल मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा गीत आप सुनेंगे, अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक की आवाजों में। फिल्म का नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अनवर मुन्नी और साथियों की आवाजों में आपने एक गीत सुना, फिल्म का नाम था अभिमन्यु।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग

0: आग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

मोहित चौहान के गाए फिल्मी हीरोपंती के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशियाना, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत मदन मोहन का था।

ताजमहल, इस फिल्म का ये दो गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था साहिर ने और संगीत रोशन का था। भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

जी हाँ, ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा अभी आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, शमसाद बेगम और साथियों की। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। अभी आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के दुल्हन मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कोहिनूर फिल्म के लिए।

बिस्तर गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आशा माफ कीजिएगा भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज आशा फिल्म के लिए आपकी समातों के हवाले।

मिश्रित गीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अगले विशिष्ट गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत शब्द संयोजन है मजरूह सुल्तानपुरी का, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलों मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए। आइए सुनते हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 12:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया जाएगा। वहीं 12:40 पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं पुणे इसी सभा में दोपहर 2:30 पर, और शाम 4 बजे हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

6:05 पर पुनः सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं जिले की चिट्ठी लेकर हम हाजिर होंगे, समय रहेगा 6:40।

शाम 7 बजे हम प्रस्तुत करेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रेफी क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण शाम 7 बजे से।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार अॼु जे सिंधी प्रोग्राम में मां वंदिता आहुजा तव्हां सभिनी जो स्वागत थी कयां साथियों जीअं त अॼु महीने जो चौथो विस्पत आहे जेको मुक़ररु थींदो आहे असांजी झलकीअ लाइ त अॼु तव्हां झलकी सां गॾोगॾु ॿुधंदा गीत संगीत ऐं ख़ासि ॾींहं जूं चर्चाऊं
1: साथियों तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो पर कॾहिं तव्हां दुकान ते आयो कॾहिं ऑफिस में कॾहिं मार्केट निकिता आहियो त कॾहिं सफ़र पिया कयो त रेडियो सेट खे मिस कंदा आहियो हा न पर हाणे सिंधी प्रोग्राम ॿुधण जी राह में ईंदड़ सभु मुश्किलूं आसान करे रहियो आहे तव्हांजे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हा यो मोबाइल तव्हां खे असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधाए सघंदो दुनिया जे कंहिं बि कुंड में दुबईअ में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जॻह ते तव्हां ॿुधी सघंदा पंहिंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तव्हां खे करणो बसि एतिरो ई आहे त जीअं तव्हां ॿिया एप्स डाउनलोड कंदा आहियो बसि ईअं ई प्ले स्टोर ते वञो ऐं सर्च वारी जॻह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज़ ऑन एयर ऐं उन खे इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तव्हां खे मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ई हेठि प्रसार भारती जो लोगो नज़र ईंदव ऐं तव्हां खे उन खे ओपन करणो आहे ओपन कंदा त साम्हूं पहिरीं खाॿे पासे लाइव रेडियो ऐं साॼे पासे लिसन न्यूज़ लिखियल नज़र ईंदव तव्हां लाइव रेडियो खे क्लिक कंदा त उते हिकु लंबी फ़हिरिस्त नज़र ईंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रनि जी तव्हां खे उते ई सभिनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखियल पढ़ण में ईंदव सर्च में तव्हां जीअं ई जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ॿ चैनल्स नज़र ईंदव हिकु विविध भारती जयपुर यानी VBS ऐं ॿियो हवा महल छपियल नज़र ईंदड़ असांजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अची पहुतासीं सही जॻह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सभु प्रोग्राम ऐं सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं जो 12:10 ते त सामिन ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गॾु
0: हिन ॼाण खां पोइ छो न प्रोग्राम जी शुरूआति मिठे गीत सां कयूं

हिने रवा प्रभु वफा जो गीत बुधव साथियों अज 25 जून आहे ऐ अज असा मल्हाए रहया आहियूं जन्म दिन आफताब शिवदासानी ऐ डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी जो साथियों आफताब शिवदासानी जो नालो बुधी तवा जे ज़हन में हुनन जो घणी फिल्मों अखियों अग्या अची वयूं हुंदियूं तवा के बुधायूं त आफताब शिवदासानी खसस 14 महीनन जी उम्र में टीवी ते ॾिसण आया हुआ उन खां पोइ पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे हुननि फिल्मुनि ॾांहुं रुख कयो ॿिए पासे जे ॻाल्हि कजे डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानीअ जी त हू तालीमी ऐं साहित्यिक सांस्कृतिक खेत्रनि में समान रूप सां सक्रिय आहिनि डॉक्टर टेकचंदानी दिल्ली विश्वविद्यालय जे आधुनिक भारतीय भाषा ऐं साहित्य जा एसोसिएट प्रोफेसर ऐं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जा डायरेक्टर रही चुका आहिनि सिंधी भाषा खां सवाइ डॉक्टर टेकचंदानीअ खे हिंदी अवधी उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ जी बि सुठी ॼाण आहे हिननि कुझु किताब बि लिखिया आहिनि सरयू से सिंधू हिकु यात्रा वृतांत आहे हुन माण्हूअ जो जंहिं सरहद जे ॿिन्ही पासे जी ज़िंदगी गुज़ारी आहे हाणे अचो त प्रोग्राम में ॿुधूं असांजी अॼु जी झलकी पागल जंहिंजा लेखक आहिनि रमेश रंगानी ऐं पेशकश आहे हरीश करमचंदानीअ जी

0: अरे मां चवा थी त मानु सुबह सुबह जो भगवान जो नालो वठी सुखमणी गुरु ग्रंथ साहिब रामायण गीता जो पाठ कंदा आइन ए हिक तहां आयो जो बिना गुरड़िया बिना बुरश बिना मुंह धोने जे बस सुबह साण यो अखबार जो पाठ
1: अरे भागन भरी अखबार में रोज ताजी खबरें पढ़ने ला मिलंदियो आइन
0: दौड़ जो ताजी खबरें मिलंदियो आइन रोज ए खून आपघात नुहरू सारण अरे चोरी धारे जे खबरन साथ अखबार भरल हुंदी आ।

0: पर खबर अथई अज एक खास खबर छपी है ही वठ दिस
1: अच्छा दिसा बिन मान जो फोटो ही त छपल है बियो छ
0: दरअसल इन बिनी के मा चंगी तरह सुजाना ये बई के जमाने में मूसा गड कॉलेज में पढंदा हुआ
1: अच्छा
0: उनन मा खाबे पासे जें जो फोटो आ है ना वो डाटो सेणो ए सियाणो हो जी अम्मा
1: जी अम्मा
0: पर हो डाटो सुस्त
1: जी तहा किया
0: अरे भागन भरी हाने बस बत कर अगते बुधाय दिंदी है ना
1: चंगो चंगो बुधायो अगते
0: जो जें जो साजे पासे फोटो आ है ना वो हो डाटो मेहनती पर अकुल रंग रूप में हो पूरो सारो
1: तछा अखबार में सिर्फ यही खबर छपी आ है
0: अरे सदोरी पहली तू पूरी गाल त बुधनी कर जो मानो जेको मेहनती हो ना वो पेंचे पुठिया 10 लाख जी मिल्कत छडे मो आए केड़ी ना नसीहती गाल है
1: नसीहत जी तो गाल आ है पर ता शायद अगते काना पर हुआ है अगते लिखियो थू त सुस्त मानो मेहनती जी विधवा सा शादी करे छदी अच्छा इन्हीं करे ही बिनी जो फोटो छापियो वयो आहे
0: अरे हां सचपच इने जो मतलब त सुस्त मानो वाकई चालाक हो काश इन गाल जी मके पहले खबर हो जे हा त
1: कहड़ो तीर मारियो हा
0: मां जते कोरो बैठो हो जा हा
1: कोरो बैठो हो जा हा चोंदे ल जब कांथी अचेव पोढा छण ते आया हो पर अन्या भी शादी अति दिल पई थेव
0: अरे चंद्रा रानी बद केतरो पोढो छो न थी वने पर छलांगो हरण कोन छडींदो है तिए मर्द ब
1: चंगो चंगो हाने देठियो सी तहां जो छलांगो अरे तहां के सोचो त पंजे पुट जे शादी ला घुरजे ए तहां आयो जो हल्यायो बुढापे में पंजी शादी करण
0: अरे हां चंगो याद डियारे बुद्ध सूटे खीसे में एक लफाफो पियो थी सो त खणी अच
1: ओ वरी केंजो लफाफो आहे
0: सेठ सोना चंद दी चिट्ठी आए मंजस
1: सेठ सोना चंद इहो वरी केरा
0: असन जे पुट मुलिया जी माइटी ले लिखियो थी एहिं तह लगे खेस दिसणा चणायन
1: छा मुरिया के दिसणींदा पर पंजो मुरली त
0: कुछ दिन का थोरो पागलन वांगर हरकतू करण लगो है पर उनन के केड़ी खबर पोंदी ए वरी पागलपण दौर त कह के मल तो अचेस
1: पर इन दौरे जे करे त पंज छ माइटी मोटी भी वयन
0: भगवान का दुआ घुर त एड़ो दौरो न पवेस जेकने सेठ सोना चंद के छोकरो वणी वियो त सोन सा तोड़े छदी सोन सा
1: इन जो मतलब त लखो खन दींदा
0: छो न इन खम वधिक समझ अरे साठ नव थी रहन मा इजो तो तैयार थी वठा
1: हा मा भी उनन जे मेहमान नवाजी जी तैयारी करे थी वठा
0: ए बुद्ध मुरली के चई छ त हो सही संभरी वे
1: हा हा ठीक आ मुरली ओ पुट मुरली
2: ला ला ला ला ला जी मम्मी
1: पुट इस पौना रह थी वे तू स्नान पानी करे जल्दी तैयार थी वठ ए बुध अज फुल सूट पाए जाए
2: छो फुल सूट छो मामे अज वरी को मुझी बोली लगाने इंदो छा
1: पुट तुझे डैडी जो दोस्त सेठ सोना चंद अचण आए
2: सेठ सोना चंद चंगो मामी मां तैयार थी तो अचा
1: हेडा हेडा पुट एकरी गाल बुध बुध उनन जे सामू घणो गाल है जे ना जेको कुछ पूछनी ना बस थोड़े में जवाब दिजे
2: चंगो मामे
1: समझी है ना गाल के
0: अरे मुरली माओ केना वई है हां वठ मां त संभरी तैयार थी वयो आया अरे लगे तो सेठ सोना चंद अची वयो है अंदर वने कुछ खाण पियाण जो इंतजाम त कर ए बुध दिस त मुरली तैयार थी वयो है
1: सब सब ठीक है तै के किस्म जी चिंता
0: नथियो हो जे त जल्दी तैयार थन ला चई
1: सब ठीक है बिल्कुल सजो इंतजाम बराबर करे रखी आई है
0: सेठ सोना चंद
3: हा तही से धनमल
0: हा साईं किए सब खुश शाक प्रसन्न राजी बार बचा नंडा वडा
3: हा साईं हा सब खुश हैं खुश ए तहां सब खुश चाक प्रसन्न राजी बार बचा नंडा वडा
0: हा साईं सब खुश मेरे पर भौजी कृपा आए सेठ साहब अच्छो अंदर अच्छो ना वियो वियो हते सोफा ते वियो अरे भागन भरी दिस केर आया है न
1: केर आए ने इचो आया से नमस्ते नमस्ते
3: नमस्ते नमस्ते
0: ही एन सेठ सोना चंद ही आ मुजी
3: घरवारी हा ना आई भाई धनामल ही आ मुजी
0: घरवारी
4: मुरली किथे आ उन खेत त घुरायो ना
1: हा हा भेणे छोती घुराया से मुरली ओ पुट मुरली ही आया सा जो पुट मुरली
3: हां अच्छा

0: 저그로 숨어서 보겠다 슬퍼해.
1: 차 날로 했다 만져.
2: 와, 얘네들 안녕하면 미야 뭐해줘 날로 보다. 위스리 왜 와자? 나게 또 따고 뭐한 거라.
3: 내내면 보자 해달라. 보다 보아 날로 보다 보아.
2: 어째 저루로 뭐해지 말티라 아야구나. 따만지 따리파?
1: 마 소나짱 초크리에 좁히. 아이 헤나사 가죠. 이게 초크리에 니 마.
2: 초크리에 니 마. 에버리. छोकरी जी माँ सा गड्डी छाकिया मुखे का शादी हिंद सा करनी है शादी तो छोकरी सा करनी है ना
4: हाँ हाँ तवा के छोकरी देखार भी
2: सच पच पोई ठीक है पर मुझे पियो के डांचो घणो दींदा
1: मुरली पुट भगवान मुखे गंज दिनान गंज ऐ धीए बायर को हिकड़ी एतरो दींदो मां जो तवा जी दिल खुश थी वेंदी
2: तदे ब
3: लखो खन त थी वेंदो ना
1: हाँ हाँ इन में छाए इन का घट वरी छा दिबो
2: पर तुम्हां की खबर आए तो मुझे यार दोस्तन एकेन मानुन जो विचार आए तो मां पागल आया
4: पागल पर छो
2: छो जो मुखे रसगुल्ला ए जमु दादा वणदा है इन करे
1: रसगुल्ला जमु वणन का खराब गाल तो कोने सच पूछो त असा बिनी ए असा जे धिए के रसगुल्ला जमु दादा वणदा है की लक्ष्मी
4: हा हा तहां जे को चो पे सब सच्चा
2: सच पच तहां बिनी के रसगुल्ला जमु पसंद आए पोए त जल्दी तहां बमूसा अंदर होना कमरे में हलो मां 5 क्विंटल रसगुल्ला ए 5 क्विंटल जमू घराए रखया हलो उठो
4: उठो त मुखे त सच पची पागल थो लगे
2: अरे छा पिया सोचो सच पच 5 क्विंटल रसगुल्ला ए 5 क्विंटल जमू घराए रखया आई विश्वास न तो अचे तो हलो उनन जी रस में स्नान करायो हलो उठो
1: हां लगे तो मुखे पागल थो
2: नथा उठो चंगो पोए मैं तवा के विश्वास देण ला एक रसगुल्लो ए एक जमू तो आने देखारया
5: सेठ सोना चंद हने जे गालिन ते न बंजो हने जी त मजा करण जी आदत आए
2: ही वठो आ हने रसगुल्लो आ हने जमू
1: वाह वाह चार रसगुल्लो ए जमू है अच्छो ए नासी अरे चाहिए ब मजा का है
4: आयल मेजमान जी इहे मेहमान नवाजी कई वेंदिया है उठो दरअसल छोकरो वाकई कुछ पागल है तवां के या गाल असा के पेरेंट चवन घुजंदी हुई
1: हां मुजो शक सही निकतो त छोकरो पागल है पागल अरे सुठो थयो जो पहरी खबर पेजी वे न त असा जी ती दुखी थी पया उठ लक्ष्मी हल हल
5: सेठ सोना चंद बुधो अरे साईं साईं मुजा साईं सेठ साहब
6: हां हां बुधो थी
5: हाय मुसा तो वेल थियो मुजा लाख रुपया बुडी गया लाख रुपया
2: छा तवा जा लाख रुपया बुडी गया डैडी कोई न तवा जो देवा बुडी गयो
5: तवा
7: हां साईं मां मास्टर कनेलाल हेमी जी घरवारी आऊं पुठिया असा जी धीर रीटा
5: किया चण थियो
7: साईं असा के भुगड़े महाराज मोकलियो आई
5: अच्छा तवा के भुगड़े महाराज मोकलियो
7: हां साईं
5: अच्छो अच्छो अंदर अच्छो अरे अरे मुरली अम्मा ओ मुरली अम्मा
8: आया से वरी केरा
5: हां हिनन सा मिल मास्टर कन्हैयालाल मास्टर साहब जी घरवारी हिनन जी धीर रीटा हिनन के भुगड़े महाराज असा जे मुरली के दिसने ला मोकलियो आ
8: भली आया अचो अचो अचो वेओ वेओ हिया रही थी मुरली के घुराया मुरली ओ पुट मुरली मुरली हेदा हेदा पुट ही तो के दिसण ला आया है पेरे पईन ही एन मास्टर कन्हैयालाल
9: पेरे तो बावा साईं आसीसा कयो त मुजी माइटी जल्दी थे
8: अही आहे
9: मास्टर रानी पेरे तो बावा अमा तवा आसीसा कयो त जल्दी
7: पुट ये तो धीए में जी रीटा है जैसा तुजी
9: छा ही आए छोकरी वाह भाई वाह छोकरी त सठी आए असा के तो वणी वई किया शादी कंदिया अरे शर्म आए वई ठीक आ हलंदी
7: सच पच तवा के छोकरी वणी धन भाग असा जा वाह भगवान वाह तुजी माया
2: तवा के खबर आए तो जदे मा बाहर निकरंदो आयन त सब मुखे पागल चवंदा है पर मुखे मुखा सवाय सब पागल लगंदा है ता भाई त पागल आयो ना पो त तमा जी दिया जरूर पागल हुंदी ए नाढो मजो इंदो पागल सा पागल जी शादी सच मच नाढो मजो इंदो
7: शेर साहब ही छापे चवे
5: अरे मामा की छा बुधाय

0: सर साहब तवागे उंदे में कोन रखन से मुजो पुट वाके कुछ पागल है
1: छा ही पागल है
0: यो जान खपोब शायद तवा माइटी कण
1: न चाहिना सी
0: हां भला पागल साहब को माइटी कण ला तैयार थिंदो
1: असा जेड़ा गरीब इंसान तैयार थिंदा सेठ धनमल असा पेंजी धीए जी माइटी पेंजे पुट सा कण ला तैयार आई पर देती लेती में शायद तांजी गुरु पूरी ना कर सकूं
2: देती लेती न मिले त न मिले छोकरी सुवासे भमे सुठी आए वरी पो असा जो पागल छोकरो बत अघामी वेंदो हेदा पंज छ माइटी मोटी बे वई आन ठीक है पोछा पोछा असा के का बख थोड़ी आ असा ये सब की देनो आ है नंग खपंदो हो सो असा के मिली दियो
1: पो वाला गाल पक्की समझा ना
0: बिल्कुल पक्की सही बिल्कुल पक्की
1: सठो सठो कोई वठो हुई नारियल मिश्रिया पाई पैसो मर्दानी गाल पक्की कयो पक्की सेठ साहब
0: इने मतलब तमा अगवाटी सोचे आया वा ठीक है मर्दानी गाल पक्की आए पर तमा पेंदी गाल ता फ्री त न विंदो त छोकरो
1: पागल आ पर मुखे सेठ साहब डपा किते तमा न फ्री वणो
0: न न कने नाल आखर मर्दानी जबान दनी थो
1: ठीक आ हाने गाल त पक्की थी वई सेठ साहब में जो विचार आए तो छोकरे छोकरी के अकेले गालू करने ला छड़ी दियो
0: हां हां तमा बिल्कुल सही फरमाए रहे हो हनन के हते रहने दियो तेसे असा अंदर हली नाश्तो ता करियो
2: हां हां ठीक है असा अंदर ता हलू पो हनन में नीने ला करे तई ता खाने आछु हेलो
3: वा मिस्टर मुरली मनी व्यासी तमा जे प्लान है एक्टिंग के वडी दाड़ी सा त सचपच
4: पागल तो लगा हां ना पर रीटा डार्लिंग हे सब तुझे इश्क में करना पियो है तुझे माइटन वट एतरो पैसो कोन हो जो मुझे पीव जो घुरु पूरी करे सकन ए मां तो खन सवाय डाल बीखे छोकरी सा शादी जी गाल त सोच भी न थो सकन
3: असा में त तुझे चवण ते अजी टाइम असा आया आयो छा तू घर में मुरली हमेशा एरियो हरकत तो कंदो आई
4: हमेशा त न पर कदे कदे
3: जदे तू मुखे पेरे पई अम्मा पियो चई मुखे दादी खिल पई अचे मनणो पवनो वाकई एक्टिंग एड़ी कई हुई जो सच्ची में ही पागल क्यों लगी
0: छा मुरली तो पागल ही एक्टिंग भी कई
4: हाँ डैडी पर हियाने तो तुम पाई पैसो नारियल ए मिश्री वठी चुका आयो तैखा सव मर्दानी जबान दिनी अथव
2: अरे पुत पहरी छोको न पे बुधाए पहरी असा के सब गाल बुधाईया त तिजे माटी लाए ती तकलीफ हुई न करनी पवन हा
0: हां पुत असा के भगवान सब कुछ दिनो है तुझी खुशी का वधे को असा के पैसो प्यारो थिंदो जा
4: छा सच डैडी पोए त म अजा देश पागल
5: पागल हिनेर मां हिया झलकी बुधव हन जा लेखक हुआ रमेश रंगानी आई पेशकश हुई हरीश करमचंदानी जी हन झलकिया में जन कलाकारन भैरव वरतो हो होया हन कमला केसवानी वासुदेव सिंधु भारती मोहन छतानी रेखा राजेश भोज सिंह कृपलानी आई किरण टहलरामानी साथियों अज जियत 25 जून आहे ता असी विष्णु नैनराम शर्मा खेब याद करे रहे आयूं अज हुनन जी वर्सी आहे विष्णु शर्मा एक समाज सेवी आई देशभक्त होजन सा गडोगड पत्रकार भी हुआ हुनन शुरुआत में रोजानी अखबार हिंदू जो पायो विधो जैखे अंग्रेजन जे जुल्मन खापोए मटे हिंदुस्तान कयाऊं हुनन जा लेख साधारण पर असरायता हुंदा हुआ जेके सिख्या पिण दींदा हुआ श्री नाले कॉलम में हुनन जा घणी लेख छपजंदा हुआ हो चंगी बेबाकी ऐं निडरता सा पहंजी लेखनीय जरिए आजादी जी जोत जगाईंदा हुआ जै करे घणी दफा हुनन खे जेल ब वणणो पियो बेइंसाफी किए दूर कजे संवाद आई सिंध जो ठोगी जहड़ा किताब पण लिखियाऊं नमन आहे हुनन जे साहस खे साथियों हाणे छो न प्रोग्राम में बुधजे एक सुहणो सो गीत

हींअर मां घनश्याम वासवाणी ऐं सुलक्षणा पंडित जी आवाज़ में हीउ सुहिणो सो गीत ॿुधव। फिल्म हुई अम्मी या मम्मी। हलंदे हलंदे साथियूं तव्हांखे ॿुधायूं त सुभाणे असीं जनम ॾींहुं मल्हाईंदासीं शिवानी वासवानीअ जो। शिवानी वासवानी दादा घनश्याम वासवानीअ ऐं मीनाक्षी वासवानीअ जी धीअ आहे ऐं पेशे सां उहा बि गायक आहे। विरासत में मिलियल पंहिंजी ॿोलीअ जो प्रेम करे हुननि हिकु सिंधी एल्बम मारूअड़ा में बि पंहिंजो आवाज़ ॾिनो आहे। सुबह के दर्द हिकु हिंदी एल्बम आहे जेको बेगम अख़्तर खे हुननि समर्पित कयो आहे। हिन सुहिणी कलाकार खे असांजी तरफ़ां जनम ॾींहं जूं घणियूं घणियूं वाधायूं। ऐं साथियूं हाणे अॼु जो सिंधी प्रोग्राम इते ई पूरो करण जो वक़्तु थी चुको आहे। वरी गॾिजाणी थींदी ईंदड़ आर्तवार ते ईअं ई ॾींहं में 12:10 ते। तेसीं ताईं वंदिता आहूजा खे ॾींदा इजाज़त। नमस्कार।

0: आपने सुना सिंधी कार्यक्रम, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल से।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम आरू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ गोपी फिल्म के लिए।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम हरू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए एआई आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 158,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या आरबीआई जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेन देन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के अटरू में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम।

0: स्कूल वाली घंटी फिर बाजन लाग गई,
1: बस्ता फिर सु सजन लाग गया है और टाबरारी नई कक्षा और नयो सत्र भी शुरू होन वालो है।
0: और सागे सागे एक मारी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब सभी सबने बच्चों ने सुबह जल्दी उठावना, टाबरा ने तैयार करना, टिफिन बियारे पोषण रो ध्यान रखना, पढ़ाई री चिंता और परीक्षा री तैयारी।
1: सही बात है रेखा बहन, क्योंकि एक माँ ही हुए जिकाने आपरे टाबरा री चिंता होया करे है। बाही सुबह जल्दी उठे है, टाबरा रो लंच मनावे और वेने झट सु तैयार कर स्कूल भेजे है।
0: तब मैं घर आंगन कार्यक्रम री शुरुआत करते हुए मैं रेखा आचार्य
1: और मैं खुशबू हर्षरा
0: घना राम राम सा।
1: देखो रेखा बहन, हर साल स्कूल खुले है, नई किताबा आवे और नई कक्षा शुरू हुए है, पर एक चीज है जिकी कदे को नहीं बदले है, बा है मारी जिम्मेदारी। मेरी तो जिम्मेदारी यहाँ लागे कि और बढ़ जावे है, जहाँ थे अबार कियो कि भाई सुबह उठनो, टाबरा ने तैयार करनो और बिमेरे साथे साथे एक माँ ने अभी चिंता हुए कि टाबरारी पढ़ाई रे सागे सागे बिहारो जिको स्वास्थ्य है नी वो भी एकदम सही रहे और वे हर क्षेत्र रे मायने आगे बढ़े, ताकि बिहारो जी को नाम है वो आगे जा रोशन हो सके। और एक माँ ही है जिकी भाई घर परिवार में और भी जिका सदस्य हुए नी बिहारो भी ध्यान रखे है।
0: और खुशबू बहन, देखो इतनी लंबी छुट्टियों रे बाद टाबरो ने सुबह सुबह बैगो बैगो उठाना, ओहो बस पूछो ही नहीं, टाबर भी सुबह सुबह उठे को नहीं है, उठने सु बचे, कोई पेट दर्द रो बहानो करे तो कोई कहे माँ आज नहीं अबे काल ही जासू। और केवल ई बखत आपा मायोरी भूमिका तो बहुत महत्व हो जाए, मैंने टाबर तो टाबर ही हुए, ई वास्ता डांट नहीं बल्कि प्यार से उन्हें समझाना, उन्हें उत्साह बनना, उन्हें स्कूल और नवी किताबें और प्रति उन्हें आकर्षित करना, उन्हें बताना कि ककर मजेदार तरीके उन्हें बताना जिके सु बच्चा आपको स्कूल से जुड़े, आपको स्कूल जाने ने कहने उत्साह वर्धक बनावे है। तो और केवल कि स्कूल खाली पढ़ाई जगह को नहीं है बल्कि टाबरारे सपनों ने आकार देने री एक जगह हुआ करे।
1: सही बात है रेखा बहन की बियाने अबार जा अबार स्कूल है जिकी अबे खुलसी तो आप यहाँ कर सका कि भाई बियाने अबार सु ही सुबह जल्दी उठानो तैयार कर दो, बियाने ओ बताओ कि भाई अबे तो थाने जल्दी उठनो पड़सी या ओ है काम है थोने जिको करनो पड़सी। और सबु बड़ी बात है रेखा बहन की बियाने ओ भी बताओ कि अनुशासन है नी वो भी आपारे जीवन में आने बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करे कि भाई स्कूल जावा तो समय पर उठा, पाछा आवा तो आपारे जी की स्कूल री ड्रेस है, आपारे जी को स्कूल रो बस्तो है वो जगह से रखो। ई खातिर कही है कि नए सत्र रे मायने टाबरा रो मनोबल बढ़ानो, जिके सु कही है कि स्कूल जानो जिको रोचक मन जावे बियारे वास्ते और वे खुद सु ही आपा सु पहले उठ जावे कि भाई मम्मी मैं तो जल्दी सु तैयार कर दे, मारो टिफिन बना दे और मैंने स्कूल भेज दे।
0: और ये देखो परिवार सहयोग और प्रोत्साहन सु भी बच्चा के बनी आगे बढ़े, बहुत जरूरी है कि जब परिवार सगला जी का सदस्य है वे मिल प्रा बच्चा ने यूं प्रोत्साहित करे और नए सपने बच्चों रो क्या है मनोबल बढ़ावे, बिन स्कूल जाने ने रोचक बनानो, रोज नई नई कहानी सागे बिन शिक्षा और स्कूल रो महत्व बताना और बिन सपनों ने नवी उड़ान देना, क्योंकि आज रो एक छोटो सो कदम काल वास्ता एक बड़ी सफलता बन जासी।
1: तो रेखा बहन तैयार हो जाओ टाबरा सु जंग लड़े वास्ते ने स्कूल भेजनो और बियारो सब काम करनो, तो बियारे साथ साथ आपने भी तो जल्दी उठनो ही है। तो देखो आ तो हुई आपारी बात की भाई टाबरारी स्कूल चालू होने वाली है, तो इनरे साथ ही आप बेना ने सुनावा एक मीठो सो गीत।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: मैंने अक्सर आप सोचो कि पेट भर गयो तापर भोजन भी पूरा हो गयो. क्या खुशबू बहन,
5: तू थे कई कहना चाह रहे हो रेखा बहन.
4: अरे अरे, हूँ बात करूँ कि आपा जग की जिकी भी महिला हुए नी बा सब री जिम्मेवारी निभाए, सब रे खाने पीने रो ध्यान रखे. पर जब आप री बात आवे तो बस खुद ने भूल ही जावे.
5: सही है.
4: पर बहना, शरीर ने स्वस्थ राखन वास्ता भोजन में पोषण होनो बहुत जरूरी है. आपा सोचो कि जल्द जल्दी खाना खा लो और जो ही लागे कि पेट भर गयो, आप और सोच लो कि आपा भोजन भी पूरा हो गयो और पोषण भी. पर बहना, पोषण तो जद भी पूरो सी जब संपूर्ण आहार ने आपा आपरे भोजन

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: गाय भैंस और पशुधन है किसान निशान, इहारी सेहत सुही मुस्कुरावे घर आंगन और खेत खलियान।
1: पशु स्वस्थ तो परिवार समृद्ध, पशु सुरक्षित तो किसान भी सुरक्षित।
0: तो बहना आज आपा देख ही रहा हो कि मौसम के तो बदल रहे, कभी तेज गर्मी तो अचानक बारिश और दौर और भी साथ साथ ही चल रहे और उमस तो आपा मिनक ही परेशान हो जाओ। तो सोचो बहना जी का पशु है वह तो निरीह प्राणी है, वह तो बोल भी सके कौन नहीं। मौसम रो असर तो बियारे पर भी पड़े क्यों खुशबू बहन?
1: साची बात है कि पशुपालन ग्रामीण परिवारारी आय रो महत्वपूर्ण साधन हुआ करे है। बिहारे हर परिवार में आपा देखा कि मिले ही है,
0: मिले और आप ही देखो कुछ कितनी बहना भी हाँ, पशुपालक उसी वे हाँ, भी चल
1: वे भी आप रो काम कर रही है, सही है। और जद वे पशु ही स्वस्थ रहे नीनी तो बिहारे हर चीज पर फर्क पड़े है, दूध है बिसु का बिहारे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फर्क तो पड़े ही है और साथ ही बिहारी जी की आर्थिक स्थिति हुए नी बिर पर सब मोटो असर पड़े।
0: सही कह रहे हो कशु बहन, जब पशु चोखा रहे नी तो दूध उत्पादन अच्छा रहे, परिवार की आमदनी भी बनी रहे और आपा भैंसु तो कई बहना भी पशुपालक हुए
1: हाँ।
0: तो वे आप घर ही जिम्मेवारी सागे पशुओं री भी देखभाल भी करती उसी।
1: सही बात है।
0: तो जरूरी है कि मौसम में मिने बिहारी देखभाल पर पूरा पूरा ध्यान देना जरूरी है
1: क्योंकि बदलते मौसम रे मायने सब पहला तो पशुआ खातिर रहने री जगह री पूरी पूरी व्यवस्था करनी, बिहारो ध्यान रखनो, बाड़ो साफ सुथरो रखनो, सूखो रखनो, बठेरी जी की नियमित साफ सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी प्रकार की गंदगी या नमी नहीं रहे क्योंकि गंदगी या नमी रहने सु कई प्रकार का कीटाणु हुए मच्छर हुए बह हो जाया करे और भी सु कई बीमारियां भी जन्म लेवे है।
0: हाँ खुशबू बहन, सागे ही पीने री पानी री जी की व्यवस्था नहीं बाबी बहुत चोखी तरीके से करनी जरूरी है। पशुओं ने हमेशा साफ और ताजा पानी देना चाहिए। गर्मी या उमस रमाए पानी की कमी से पशु अक्सर कमजोर हो जाया करे ई खातिर नियमित अंतराल पर ब्यौरे पानी की व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए
1: और इनरे सागे सागे ब्यारे भोजन पर भी विशेष ध्यान देनो है जिको जरूरी है क्योंकि जहाँ अपर शरीर खातर संतुलित भोजन चाहिए नी बिहार बिहार पशुआ रे खातर भी संतुलित भोजन री व्यवस्था करनी जरूरी है। बिहारे वास्ते खाली सूखो चारो ही नहीं बल्कि हरो चारो है खनिज मिश्रण री भी उचित मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए है। इसु भी कही है कि पशुआरी जी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है नी बढ़े है, साथ ही ई बदलते मौसम रे मायने पशुआ ने भी बुखार आ जावे या कोई दूसरा संक्रमण हो जावे तो इसे रे मायने घरेलू उपचार है रे साथ साथ पशु चिकित्सरी भी सलाह लेनी जरूरी रहे और समय रे साथे साथे जिका बियारे टीका लग गया करे है बेबी टीका लगाना जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल साची बात खुशबू बहन, समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी बहुत जरूरी है करे। आज छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा लेगे।

0: पे।
1: अगर पशु सुस्त दिखे, खाना खावना छोड़ देवे या अन्य असामान्य लक्षण दिखे नहीं, तो तुरंत पशु चिकित्सक ने संपर्क करो, क्योंकि पशु केवल जानवर ही को नहीं बल्कि आपके परिवार की आर्थिक शक्ति है। बियारी देखभाल करना आपकी जिम्मेवारी भी है और समझदारी भी है। तो जिकी बहना पशुपालक है, अगर ये बदलते मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरसी तो वे आपके पशुओं ने स्वस्थ और सुरक्षित राख पासी।
0: तो आतो हुई जानकारी की भई आपारे घर में पशु है तो बियारो ध्यान किया रखा। इनरे साथे साथे ही बहना ने सुनावा एक चोखो सो गीतड़लो।

0: कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने।

0: गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: मैंने जद देश रो हर नागरिक आगे बढ़े नी तो ही राष्ट्र प्रगति री नई ऊंचाइयों ने छुए।
1: सही बात।
0: और आज आपा आई चर्चा कर सो आत्मनिर्भर भारत अभियान री, क्योंकि बहना आत्मनिर्भर भारत अभियान ई सोच ने साकार करने रो ही प्रयास है, जठे स्थानीय उत्पादों ने बढ़ावा देने सुलेर महिलाओं, युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों ने नए अवसर प्रदान करने तक ई अभियान आप कई नई विकास राहों ने खोलियो है। और बेना सागे सागे देखो ये जो कोई रो उद्देश्य है वो ओई है कि आर्थिक रूप से देश ने सशक्त बनाना।
1: सही कह रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान रो मुख्य उद्देश्य भारत रे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रो प्रमुख केंद्र बनाना है। और ई अभियान रे द्वारा रक्षा उत्पादन है, तकनीकी नवाचार है, बुनियादी ढांचा और कृषि जैसा क्षेत्र रे मायने भारी उपलब्धियां हासिल कर और देशरी अर्थव्यवस्था ने भी नई मजबूती प्रदान करी है।
0: मैंने ई अभियान रे माध्यम से वोकल फॉर लोकल री भावना भी मजबूत हुई है, जिस उद्देश्य राज्य का छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है और स्वयं रोजगार है भी एक नई पहचान मिली है। ये अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि आई रही है कि महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों ने आपरो व्यवसाय शुरू करने खातर प्रोत्साहन और सहायता राशि भी मिली है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और विभिन्न रोजगार की योजना चल रही है, सरकार चला रही है, वीरे माध्यम से लाखों लोगों ने रोजगार और आयरा नया अवसर भी मिलिया है। कृषि रे क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता आज भारत पाली है। किसान जी का है आज आधुनिक तकनीक यूज कर रहे है, बेहतर बाजार व्यवस्था वने मिली है, सरकारी सहायता वने मतलब निरंतर मिल रही है, जिसु भी आय बढ़ने रा अधिक प्रयास ही है। इधर साके साके देश में जी का निर्मित उत्पादों रा उपयोग रहनी विने देश मतलब देश ने मांडो से मंगाने जरूरत को नहीं पड़े, देश खुद ही
1: कदम उत्पादन
0: खुद ही कर रहे है और महत्वपूर्ण दिशा में कदम आगे और भी उठा रहे है। साके साके आज आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना का नहीं बना बल्कि जन जन रो एक अभियान बन चुकी है। और अभियान देशवासियों में आत्मविश्वास ने बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों रो बेहतर उपयोग करने और भारत ने आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे है। और ओई कारण है कि आत्मनिर्भर भारत रो सपना आज धीरे धीरे वास्तविकता रो रूप लेता जा रहा है। तो खुशबू बहन आ तो करी आज री आप योजना री बात अभी बहना ने सुना तो गीतड़ लो।

0: और देखो ना बेना, बातें बातें में समय भी ठाई पड़ी को नहीं है। घड़ी टिक टिक कर इशारा कर रही है कि आज आपा आपारी बातें में अठे विराम देवो। हाँ।
1: तो चालन रो बखत हो गयो तो माने देव सीख। मैं खुशबू हर्ष
0: और मैं रेखा चारेरा
1: गणा गणा
0: राम राम सा।

0: भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने

0: आई हैं। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढुलम अरु चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ मोहरा फिल्म के लिए।

मोहरा, जी हाँ, ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा अभी आपने सुना। आवाजें थी पंकज उदास और साधना गर सरगम की। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे विजू शाह। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है। इसके साथ ही हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन स्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है

0: इसके बाद हम आपसे बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की, इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स।
0: जी,
1: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वाज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर फॉर, आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन क्लियर फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर आई एम ए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं, जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: okay, मतलब पूरा वो
1: हाँ। तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली जेएनके का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में,
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे। जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं, जहां से पांच पांच छह छह महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशंस में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज व्हाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग व्हाइट क्लोथ, योर इग्लू इज व्हाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2342108 5।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको

0: भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
1: अच्छा।
0: सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
1: साथ में लेकर
0: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
1: अच्छा।
0: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहां पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफस्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे जाके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपके बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम कराना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम

0: पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए।
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी थॉट्स रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से एक नए बच्चे निकल करके आते
1: जी,
0: रहेंगे
1: जी, जी,
0: तो ये
1: जी,
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह
1: रहा। मैं बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद था, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
0: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अंथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, ये सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त वो क्षण वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको बीएसएम से सम्मानित किया गया
1: जी।
0: तो वो जो मोमेंट था,
1: देखिए साहब कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा
0: जी।
1: हाँ बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने जो मेरे ऊपर उच्च अधिकारी थे उन्होंने इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
0: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
1: जी,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल जी। सर एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वीं में हैं
0: जी,
1: दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके।
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा,
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं।
0: ओके।
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं।
0: तो
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है, पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक आदर्श डाले आते हैं
0: जी,
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिलता है।
0: यानी कि बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके। तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
1: या जो पास आउट हो चुके हैं
0: वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल
1: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके। हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम

0: के लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये है मैसेज। जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड वन से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई गो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोद फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है।
0: ओके।
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
0: ओके।
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहां
0: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप जो ये बता रहे हैं आप
1: संस्थान में, जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट

0: कि सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके
0: हाँ, तो प्लस यहां पे ये है कि जो जो बच्चे यहां पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
1: सर। लेकिन एक चीज यहां पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे
0: जी,
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहां पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है। तो यहां पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहां पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक अच्छा। तरीके से जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहां पे जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, पर द फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी।
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू। तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
0: फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी जी। देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था।
0: जी,
1: और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो उस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड अ टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, सर लोग बताते हैं कि सर अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है। तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार

0: पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता
1: देखिए। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में

0: इंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके जी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आर नेशन, आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, वंदे मातरम भारत माता की जय,
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
0: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
1: जी।
0: तो इस वर्चुअल एलियनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके,
0: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है, यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
1: जी।
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है।
1: सर ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज, सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी जवान पीढ़ी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही, जैसे मैंने पहले बोला इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
1: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है
0: जी, जी।
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
0: जी।
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
1: किताबें
0: देखिए साहब, आप
1: तो
0: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उससे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
0: भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेकर फर्क

0: नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीजों से, प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना समझाना सिखाना बहुत जरूरी है.
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है.
1: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों.
1: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिस सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: तो मच
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहां पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आने के लिए.
0: जी,
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी बीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं. 5 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. आज संविधान हत्या दिवस है. इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था. श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं.
4: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है. झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया.
5: सीख चो में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं. श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही. श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगमनेनी रमेश शामिल हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली. झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि

0: विषय के राष्ट्रीय सुरक्षा एआई क्वांटम तकनीक जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हैं। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों। दिव्या, ये बीकानेर की शामें और हल्की हल्की हवा वाकई में बहुत सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और शाम की 5:05 हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज में जो सुस्ती है वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि बीकानेर के लोग जब अपने काम से फ्री होकर चाय की चुस्कियों के साथ हमारा इंतजार करते हैं। जी साथियों, पुनः नमस्कार। आकाशवाणी बीकानेर पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी युवा साथी दिव्या।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिपुदमन। जैसे कि आप अब मेरी आवाज़ से पहचान गए होंगे। देख दिव्या, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं गले का रियाज कर रहा था अभी।
1: अच्छा जी, रियाज। दोस्तों, अब आप इनकी बातों में मत आइएगा। दरअसल आजकल हम युवा यही कहानी लिए फिरते हैं, तो रात भर मोबाइल पर वीडियोस स्क्रॉल करते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, और दिन में जब कुछ क्रिएटिव करने का टाइम आता है तो बैठे बैठे तन्हा तन्हा थोड़े से सुस्त लगते हैं।
0: बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है, पर सच बताऊं, रात में जब बिस्तर पर लेटते हैं ना तो दुनिया भर के ख्याल दिमाग में घूमते हैं। कभी करियर की टेंशन, कभी कभी लगता है कि सुबह नाश्ते में क्या खाऊंगा, ये भी याद आ जाता है, और ये सोचकर सारी नींद गायब हो जाती है, और अगले दिन आलस ही आलस, और उसमें मैं अपने ये बीकानेर की देसी राबड़ी खा लूँ तो उसमें और नींद आने लगती है।
1: और इसी को कहते हैं साथियों, स्लीप साइकिल का बिगड़ना, यानी कि हमारी जो उल्लू वाली आदत है, इसका मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सॉलिड और देसी इलाज है।
0: क्या तुम कह रही हो, कड़क चाय और पी लूँ एक?
1: अरे नहीं बाबा, चाय तो नींद को उड़ा देती है। मैं बात कर रही हूँ साथियों थोड़े से स्ट्रेच और सही तरीके से सांस लेने की, मतलब योग की।
0: अरे बाप रे दिव्या, देखो मैं सीधे खड़े होकर पैर के अंगूठों को नहीं छू पाता, और तुम उसे योग करवाने की बात कर रही हो। कौन से चक्र में फंसाने वाली हो मुझे?
1: अरे तुम्हें कोई शीर्षासन थोड़े ही करना है, सिर के बल खड़े हो जाओ, या बहुत ही रिलैक्सिंग चीज बता रही हूँ, जैसे सोने से ठीक पहले अगर हम अपने बिस्तर पर ही बालासन यानी चाइल्ड पोज ले लें, तो इसी दिमाग के सारे

0: की टेंशन यूं चुटकियों में छू मंतर हो जाती है। या फिर बात करें भ्रामरी प्राणायाम की, बस आंख और कान बंद करके भंवरे की तरह ऐसी आवाज निकालें तो भी हमें काफी रिलैक्स महसूस होता है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान बता दिया, बिना पसीने वाले काम है ये तो।
0: और सबसे बढ़िया है सवासन।
1: अरे वाह, सवासन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुर्दे की तरह बस सीधे लेटर हो, इसमें तो मैं गोल्ड मेडल भी ला सकता हूँ।
0: लेकिन इसमें खर्राटी नहीं मारनी होती, जो कि तुम बिस्तर पर जाते ही शुरू कर देते हो। रिपुदमन, सवासन का मतलब है कि अपनी सांसों पर ध्यान देना और शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स महसूस करवाना। अगर हम इसी रात को सोने से पहले सिर्फ 5 या 7 मिनट कर लें तो ऐसी गहरी और सुकून वाली नींद आती है साथियों कि सुबह अलार्म बजने से पहले ही हमारी आंखें खुल जाती है, वो भी फुल एनर्जी के साथ।
1: वाकई में क्या शानदार तरीके बता दिए, मतलब आज रात से मोबाइल साइड में रख दूंगा और शवासन चालू। अच्छी नींद आएगी तो अगले दिन मूड भी बढ़िया रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा।
0: एकदम सही। तो साथियों, आप भी आज रात से इसे आजमा कर देखिए। अपनी नींद को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब अच्छी नींद होगी तभी तो हमारे जो सपने हैं वो सच होने की शुरुआत अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों हम अपनी नींद के साइकिल को थोड़ा सही करने जाते हैं, तब तक आप सुनिए ये बेहतरीन गाना कुछ शानदार पलों को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये जिंदगी का गेम यूं ही चलता रहेगा।

0: किचन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: और साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसका आप सबको हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी, हमारा बेहद खास क्विज सेगमेंट। तो हमारा आज का पहला सवाल है,
1: हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत युवाओं में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत युवाओं के उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। और हमारा दूसरा सवाल है,
0: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख संगठन में भारत को एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए सदस्य के रूप में चुना गया है। मैं सवाल को दोहराती हूँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख संगठन में भारत को एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए सदस्य के रूप में चुना गया है।
1: तो दोस्तों, प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा, इन सब दोनों सवालों के जवाब हम आपको प्रोग्राम के अंत में देंगे। तो आप प्रोग्राम को पूरा सुनेंगे तो आपको उनके जवाब भी मिलेंगे। दिव्या, एक बात कहूँ, ये जो अपन गाने सुनते हैं ना, वाकई में कभी कभार इतना सुकून और इतना रिलैक्स कर देते हैं कि पूरी दिमाग की टेंशन थकान छूमंतर हो जाती है।
0: बिल्कुल रिपु दमन, दिमाग तो रिलैक्स हो ही जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग आज कहीं और ही चल रहा है शायद। गाने के मजे लेने के चक्कर में तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो?
1: अरे मैं क्या भूल गया, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट भी है और इस बार मैंने तुम्हारे हिस्से की चाय भी नहीं पी, जिसका इल्जाम तुम मुझे हर बार लगाती रहती हो, तो फिर क्या भूल गया मैं?
0: चाय नहीं बाबा, जरा स्टूडियो के बाहर वाले अपने कैबिन की तरफ देखो, वहाँ कोई है क्या अभी?
1: नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए।
0: तो फिर वहाँ का पंखा फुल स्पीड में क्यों घूम रहा है? और वो जो दो दो ट्यूबलाइट्स जगमग जगमग जल रही है, वो किसके लिए? क्या तुम वहाँ किसी भूत प्रेत का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो?
1: अरे नहीं, वो क्या है ना कि बीकानेर में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो अगर कोई भूत गलती से वहाँ आ जाएगा तो उसे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बेचारा हवा खा लेगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि बीकानेर की गर्मी में बिना कूलर पंखे के तो भूत के भी पसीने छूट जाए।
0: तो अच्छा जी, यानी कि भूतों की इतनी भयंकर चिंता तुम्हें हो रही है, लेकिन इस भूतों की सेवा को जो महीना है, आखिर में जो बिल तुम्हारे हाथ में आएगा वो देखकर शायद तुम्हारे भी पसीने ही छूट जाएंगे। मजाक अपनी जगह है रिपु दमन, लेकिन तुमने जो अभी किया वो हम में से ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में हर दिन करते हैं। कमरे से बाहर निकलते हैं तो बस एक छोटा सा स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे बस 5 ही मिनट का काम है, अभी आ जाऊंगा।
1: बात तो तुमने एकदम 16 आने सही की है, हमारी ये आदत ही बन गई है। अक्सर घर में हमारी मम्मी आवाज़ लगाती रह जाती है कि बेटा कमरे से बाहर जाओ तो पंखा बत्ती बंद करके जाना, लेकिन हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। दिमाग में बस यही चलता रहता है कि बस एक ट्यूबलाइट या एक पंखा चलाने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ जाएगा।
0: और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है साथियों, और देखें तो इसे ही हम कलेक्टिव वेस्टेज कहते हैं।

0: सोचो अगर बीकानेर के हर घर में, या बात करें हमारे राजस्थान की, तो ऐसे ही सिर्फ एक एक लाइट या एक एक पंखा फालतू चलता छोड़ दे तो हर घंटे कितनी लाखों यूनिट बर्बाद होगी। और ये बिजली हमारे घर के पिछवाड़े पेड़ पर तो उगती नहीं है दोस्तों, कि इसे बनाने में कितना कोयला जलता है, कितना पानी खर्च होता है और ना जाने कितने प्राकृतिक संसाधन खत्म होते हैं। हम जो एक चीज़ एक सेकंड में बर्बाद कर देते हैं उसे बनने में काफ़ी बरसों की मेहनत लगती है।
1: सही कह रही हो, मतलब हम बेवजह अपनी जेब तो हल्की कर ही रहे हैं और साथ साथ में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वैसे भी बिना इसके तो आजकल युवाओं को एक मिनट भी सोचना मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर लाइट कट जाए तो फ़ोन कैसे चार्ज होगा, वाईफाई राउटर कैसे चलेगा। और भाई बंधु जो वीडियोस देखते रहते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उनका करियर तो अंधकार में चला जाएगा ना।
0: बिल्कुल। और जो फ़ोन चार्जिंग से मुझे एक बेहद बड़ी बीमारी याद आ गई है जो आजकल हम युवा लोग कूट कूट कर कर रहे हैं, जिसे वो देखें तो फैंटम लोड कहते हैं, या फिर चुपके से बिजली पीने की जो आदत है ये हम युवाओं में एक तरह की बीमारी के रूप में पनप रही है।
1: बात तो तुम सही कह रही हो, मतलब जो हम मोबाइल चार्ज लगाते हैं बेवजह, उसको हम मोबाइल चार्जिंग से तो निकाल लेते हैं, पर वो फैंटम लोड होता क्या है, ये कोई बॉलीवुड मूवी का नाम सा लग रहा है मुझे।
0: अब बॉलीवुड मूवी के नाम में देखो जैसे विलेन लगते हैं, तो ये भी किसी विलेन से कम नहीं है। अब जब हम देखते हैं कि अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो मोबाइल को निकाल देते हैं, लेकिन चार्जर का जो प्लग है वो सॉकेट में ही लगा रहता है और स्विच भी काफ़ी बार ऑन रहता है। हमें लगता है फ़ोन तो कनेक्टेड है नहीं, तो कुछ खर्च तो हो नहीं रहा होगा, लेकिन असल में वो खाली चार्जर भी धीरे धीरे खपत कर रहा होता है। और इसी तरह टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं लेकिन मेन स्विच हमेशा ऑन रहता है। ये सब फैंटम लोड है जो चुपचाप हमारे मीटर की रीडिंग को बढ़ाते रहते हैं।
1: अरे बाप रे, तुमने तो बिल्कुल एकदम पते की बात कह दी। मेरा लैपटॉप का भी चार्जर पिछले 3 दिनों से सॉकेट में लगा हुआ है और स्विच भी ऑन है, और मेरी आदत भी है अक्सर मैं टीवी देखते हुए सोफे पर बैठ जाता हूँ और मोबाइल में वीडियो देखने लगता हूँ। ये भी एक बेकार की आदत मैंने पाल रखी है, बेचारा टीवी खुद को ही देखता रहता है।
0: हाँ, और इसी अपनी मल्टीटास्किंग का नाम देकर लापरवाही छुपा देते हैं। और एक वो आदत भूल गए क्या, जो तुम फ्रिज के सामने खड़े हो जाते हो, दरवाज़ा खोलकर 5 मिनट तक तो सोचते रहते हो कि इसमें से क्या खाऊं। अरे भाई, जब तक तुम डिसाइड करोगे तब तक फ्रिज की सारी ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और उसे वापस ठंडा करने में जो जोर लगता है ना, वो सीधा हमारे बजट को बिगाड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हमारा जो ये एक तरीका है ना कि नवाबों की तरह से जीना, जैसे कि 18 डिग्री पर AC चलाना है, उसके बाद शिमला बनाकर उसमें रजाई ओढ़ के सोना है। अरे भाई, जब तुम्हें रजाई ओढ़ के ही सोना है तो उसे 24-25 पर सेट कर लो, ठंडा भी रहेगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। इन गर्मियों के मौसम में अपने बीकानेर वाले तो वैसे भी छतों पर सोने में मजा लेते हैं, पानी छिड़का और सोया, मस्त आनंद आता है।
0: एकदम पते की बात कही, जो नींद खुली छत पे आती है वो AC वाले कमरे में कहाँ। खैर, देसी नुस्खे हमेशा काम आते हैं। दिन में सूरज देवता की मेहरबानी इतनी रहती है कि शानदार रोशनी आती है जो हमें पर्याप्त रहती है। खासकर अपने राजस्थान में तो सूरज की कोई कमी नहीं है, भरपूर मेहरबान रहते हैं सूरज भगवान के, उनकी रोशनी में हम अपना सारा काम निपटा सकते हैं। तो फिर दिन के समय में घर की ट्यूबलाइट हमें जलानी क्यों है, अपने घर के मोटे मोटे पर्दे हटाएं, खिड़कियाँ खोलें, नेचुरल हवा और सूरज की रोशनी से मजा लें। इससे घर का माहौल भी फ्रेश रहेगा और मीटर भी थोड़ा शांत रहेगा।
1: बिल्कुल, तुमने एकदम पते की सही बात कह दी। वैसे भी चलते चलते इतनी सारी बातों के बीच में अब टाइम हो चला है, क्योंकि इतनी सारी ज्ञान की बातें करने के बाद हमारे दोस्तों का भी मन होने लगा होगा संगीत सुनने का, तो अब संगीत की तरफ रुख करते हैं और ऐसा ही एक एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित।

0: है हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: वैसे दिव्या, अभी जब हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात और मुझे याद आई जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रिबुदमन, ऐसी कौन सी बात याद आ गई तुम्हें, जरा हमारे साथियों के साथ भी शेयर करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, परिश्रम जो हम करते हैं यानी हार्ड वर्क, हम सब जानते हैं कि कामयाबी के लिए वो बेहद जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ

0: मेहनत करने से काम चल जाता है। मुझे लगता है कि मेहनत करना जरूरी है पर परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए।
1: अरे वाह रिपुदनम, तुमने तो आज युवाओं के इवन मेरे दिल की भी बात कह दी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कई युवा साथी हैं दिन रात एक करके पढ़ाई या काम करते हैं, फिर भी उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तब वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर कमी उनकी मेहनत में नहीं है साथियों, बल्कि मेहनत की दिशा में होती है। इसे हम स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं।
0: बिल्कुल सही पकड़ा है। इसे एक छोटे से उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान दीवार धकेलने का काम करे, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दे, पसीने बहाए, पूरी मेहनत करे, लेकिन दीवार एक इंच भी नहीं हिलेगी, नतीजा शून्य है। अगर वहीं वो ताकत कोई सही जगह लगाई जाए तो चुटकियों में काम पूरा हो सकता है।
1: बिल्कुल बढ़िया उदाहरण दिया है रिपुदमन तुमने, यानी बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के की गई मेहनत सिर्फ शून्य है, यानी समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी। इसीलिए हम युवाओं को सबसे पहले अपना एक साफ लक्ष्य तय करना चाहिए, या फिर उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक सही रणनीति बनानी चाहिए और उसे अपनानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज के दौर में यह और भी ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो फोकस भटक जाता है। सही दिशा में परिश्रम करने का मतलब ये भी है कि अपनी खूबियों अपनी कमियों को पहचानना, जहां सुधार की ज़रूरत है पूरी ईमानदारी से वहां सुधार करना और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना।
1: 100% सच बात है ये, यानी कि सही दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी हमें मंजिल के बेहद करीब ले जा सकता है। तो साथियों, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है, लेकिन पैर पैडल पर मारने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि हमारी जो साइकिल है वो सही रास्ते पे जा रही है कि नहीं।
0: तो साथियों, अपने परिश्रम को सही दिशा दीजिए, सफलता कामयाबी चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और संगीत के साथ।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समा

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: कर
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा

0: दिव्या, और जब हम सही दिशा में मेहनत करने की बात कर रहे थे तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम घूमने फिरने की जब बातें करते हैं, जैसे भी गाने के माध्यम से हम घूम आए हैं और वैसे ही घूम घूम के बोर भी हो गए, पर एक ऐसी जगह मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जिसे घूम कर कभी बोर नहीं होगी। ऐसी हमारे पूर्वजों की ऐसी कलाकृति, ऐसे टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी फील करती है, उसके सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पानी भरती है।
1: ओहो रिपुदमन, आज तो तुम बड़े दार्शनिक अंदाज में बात कर रहे हो। अब जरा खुलकर बताओ कि कौन से इतिहास के पन्ने पलट रहे हो।
0: देखो, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पत्थरों पर लिखी गई एक ऐसी कहानी जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐतिहासिक कोहिनूर है जिसे कहते हैं हम खजुराहो का मंदिर।
1: अरे वाह रिपुदमन, तुमने तो सीधा खजुराहो का जो मंदिरों की याद दिलाई है। सच में भारत की अद्भुत वास्तुकला का जब भी जिक्र आता है तो खजुराहो के मंदिर का नाम सर्वोपरि आता है। चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा बनाए गए ये मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और जब हमारी प्राचीन कला का एक बेहद खूबसूरत नमूना का जब नाम आता है तो खजुराहो के मंदिर भी उस पर टॉप पे ही आते हैं।
0: बिल्कुल, वहाँ की नागर शैली और पत्थरों पर की गई महीम नक्काशी देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से विदेशों से आते हैं, और उन मूर्तियों ऐसा लगती है कि वो मूर्तियाँ भी बोल पड़ेगी। वैसे दिव्या, अक्सर लोग एक गलत फहमी में भी रहते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनी हुई है उसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ काम शिल्प की मूर्तियाँ हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है।
1: तुमने बेहद सही और सही मुद्दा उठाया रिपुदमन। ये हमारे युवा साथियों का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो मूर्तियाँ हैं सिर्फ काम शिल्प की नहीं बल्कि कलाकारी का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये मंदिर उस दौर में आम जीवन को, संगीत को, नृत्य को, किसानों को और हमारे आध्यात्मिक दर्शन को दिखाते हुए आइए। ये मानव जीवन के चार प्रमुख स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन की असली कहानी को बयां करती है।
0: और वहाँ का कंदारिया महादेव मंदिर तो वास्तुकला की एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती है।
1: बिल्कुल,
0: सोचो उस दौर में शिल्पकारों का हुनर और उनका परिश्रम किस स्तर का रहा होगा, कितने गजब के स्तर का रहा होगा कि उन्होंने इतनी बड़े मंदिर, इतनी बारीक शिल्पकारी को अंजाम दिया।
1: सच में रिपुदमन, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर हमें सच में गर्व होना चाहिए। हम युवाओं को जब भी मौका मिले ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर जरूर जाना चाहिए ताकि हम अपनी जड़ों और अपने समृद्ध इतिहास को बेहद करीबी से देख सकें, बेहद करीबी से महसूस कर सकें।
0: बिल्कुल, घूमने की बात यूं ही चलती रहेगी। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आप भी कहीं ना कहीं घूम आइए क्योंकि इस मौसम में घूमने जाने का तो मन सभी का करता है। चलिए हम संगीत की दुनिया में घूमने चलते हैं।

0: दिव्या, आज की बातचीत में वाकई तुम काफी एनर्जेटिक फील करवा रही थी। आज क्या बात है, तुम्हारी नींद पूरी हुई आज रात को, ऐसा लगा मुझे।
1: बिल्कुल विपुदमन, एकदम सही बात पकड़ के बैठे हो। कल तो मैंने बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो मजे की नींद ली है, एकदम बढ़िया और स्वस्थ। और सच कहूँ तो एक एक्टिव दिमाग के लिए एक्टिव प्रेजेंटेशन के पीछे भी अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर की बैटरी को यानी हमारी इंटरनल एनर्जी को रिचार्ज कर देती है।
0: वैसे दिव्या, रिचार्ज और एनर्जी की बात चली रही तो मुझे लगा कि ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि अपने आसपास को भी एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे कि हम खुद रिचार्ज होते हैं, वैसे ही बाकी के बिजली और बाकी के रिसोर्सों को भी हमें संरक्षित करना चाहिए, जैसे कि हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले।
1: बिल्कुल सही कहा रिपुदमन तुमने, हमने बात की थी ऊर्जा संरक्षण की। अब चाहे ऊर्जा की बात हो, वो हमारे भीतर की हो, चाहे बाहर की हो, इवन हमारे पर्यावरण की भी क्यों ना हो, उसका सही इस्तेमाल और उसे बचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन रिपुदमन, कभी तुमने ये सोचा है कि जब कभी हम समाज में रहते हैं तो हमारी इस इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया क्या हो सकता है?
0: अरे बाप रे, तुम तो बहुत गहरे सवाल कर रही हो। वैसे पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे दमदार जरिया है हमारा संप्रेषण, यानी हमारी कम्युनिकेशन स्किल। हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे रखते हैं, यही है हमारा संप्रेषण।
1: बिल्कुल सही पकड़ा रिपुदमन तुमने कि अक्सर हमारे युवाओं के साथ जो हम सोचते हैं, बोलते हैं कि कैसे एक अच्छे संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल का, मतलब जैसे मेरे साथी लोग सोचते हैं कि सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना या बहुत तेज़ बोलना या अपनी बातों को सामने फटाफट रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। अपनी बात को सरल, सहज, साफ और एकदम असरदार तरीके से सामने वाले तक पहुँचाना ही असली संप्रेषण कौशल है।
0: तुमने एकदम 100% सही कहा दिव्या। संप्रेषण का मतलब केवल बोलना ही नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है अच्छी तरीके से शांति से सुनना। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो पहले एक अच्छा लिसनर हो सकता है। जब वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनेगा तभी तो वो सामने वाले से बात कर पाएगा।
1: सही बात है साथियों, आज के डिजिटल दौर में जहाँ ज्यादातर बातचीत सोशल मीडिया या

0: पर होती है। वहाँ हम युवाओं के लिए सही कम्युनिकेशन स्किल का होना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि बेहद ज़रूरी है। कई बार गलत शब्दों के इस्तेमाल या बिना किसी सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है।
1: इसीलिए हमारी बातचीत में शालीनता, स्पष्टता होनी चाहिए। चाहे हम किसी इंटरव्यू में क्यों ना बैठे हो, चाहे दोस्त के साथ बातें कर रहे हो और हम मंच पे हो, तो हमारा आत्मविश्वास, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है, उसे भी कंट्रोल करना चाहिए।
0: तो साथियों, जहाँ स्वस्थ नींद शरीर को ऊर्जा देती है और ऊर्जा संरक्षण हमारे कल को सुरक्षित करता है, वहीं बेहतरीन संप्रेषण कौशल यानी हमारे जो एकदम परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी पर्सनालिटी को और ब्राइटर बनाता है। तो क्यों ना आज से ही अपनी बात को बेहतर ढंग से कहने

0: मिट्टी को और ब्राइटर बनाता है। तो क्यों ना आज से ही अपनी बात को बेहतर ढंग से कहने और दूसरों को धैर्य से सुनने की शुरुआत करेंगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं रोजगार सूचना की। जी साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने साल 2026 के लिए असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर यानी सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
1: जी हाँ दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी में आपको और या संस्कृत में आपका ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा इसके अंदर रहेगी 21 कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
0: और जैसा कि आपने सुना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात है, तो इसमें एक बेहद ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपनी मातृभाषा, हमारे राज्य की भाषा राजस्थानी का भी ज्ञान होना ज़रूरी है।
1: और साथ ही साथ बात करें कि इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो 20 जून से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और 19 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्विज सेगमेंट के अंदर, जहां हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब देने का समय हो गया है। तो आपका पहला प्रश्न था,
0: हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत युवाओं में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई, जिसका सही जवाब है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय।
1: बिल्कुल दोस्तों। और दूसरा सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN के किस प्रमुख संगठन या परिषद में भारत को एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका जवाब है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। जैसा कि दोस्तों प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा चला, बातचीत के दरमियान इसका पता भी नहीं चलता कि कब बातें ख़त्म हो जाती है और प्रोग्राम यूँ चल पड़ता है। वैसे हमने काफ़ी सारी बातें की, कौशल विकास, संप्रेषण की, हमने नींद की बात की कि हमारे लिए नींद कितनी ज़रूरी है। बताओ दिव्या, कि नींद के लिए हमें योग करना कितना ज़रूरी है?
0: योग करना यूँ ज़रूरी है कि अगर देखो सारा दिन हम मोबाइल पर रहते हैं, बाहर घूमते हैं, पॉल्यूशन में रहते हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं उछटता रहता है। एक बेहतरीन नींद के लिए हमारे मन का शांत होना बेहद ज़रूरी है। अब मन शांत नहीं होगा तो हम क्या ही कर पाएंगे, ना बेहतर नींद ले पाएंगे, ना अगला दिन अच्छा जाएगा। उसके लिए जो हमने बात की थी कि सोने से पहले शवासन का प्रयास करें या फिर चाइल्ड पोज लेकर सोएं, जिसमें अपने कंफर्ट जोन में आकर आराम से नींद ले सकें और अगले दिन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके।
1: बिल्कुल, ऐसी तरीके से हमने और भी बातें की, घूमने फिरने की बातें की, अपने पुराने इतिहास की बातें की, पर अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, अब कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत कर रहे थे रिपुदमन और दिव्या सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.6 MHz पर। लीजिए अब सुनिए हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

एट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा संध्या 7 बजे।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। छह बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, क्षमा करें, हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन

0: भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

Akashvani at 90. लीजिए आप सुनिए राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, जिसे संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। ये फिल्म है अमरदीप और आवाज है आशा भोसले और साथियों की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लीजिए अब सुनिए मनचली फिल्म का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज है किशोर कुमार और साथियों की।

0: शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज दी थी किशोर कुमार और साथियों ने, और ये फिल्म थी मन चली। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, और ये फिल्म है आम्रपाली, आवाज लता मंगेशकर की।
1: Ha ha ha ha!

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में शैलेंद्र की शब्द रचना। संगीत है शंकर जयकिशन का, ये फिल्म है इस फिल्म को हमने लिया है वो दिन याद करो फिल्म से, और आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर के गाए हुए वो दिन याद करो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 6:30 होने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, गुरुग्राम में शुरू हुई ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मानसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रुपए माहवार भी दिए जाएंगे।
2: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाईमाधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई

0: तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
1: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
2: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट भेजते हैं, तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
3: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है, और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
4: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव

0: छिड़काव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार है। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब पौन घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में 1-1 इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए। निर्जला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल करबला मैदान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर ₹25,000 करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक

0: रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल भराव की स्थिति नहीं बने। जहां आवश्यकता है वहां नालों के सुधार और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा नालों में नहीं डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह खेल संकुल में हुआ। इससे पहले 50 दिनों तक योग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में नियमित योगाभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इनमें भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशारा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी, ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास और नवाचार रबारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियां री हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहले री हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा हा। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वे कहो कि भारत

0: આવતા વખતમાં ઉર્જા હલકા સારું નવીકરણીય ઉર્જા ક્ષમતા સ્માર્ટ મજબૂત ઢાંચા અર ભંડારણ પ્રણાલી માથે તેજીયું કામ કરી રહ્યો હૈ. મનોહરલાલ કહ્યો કે દેશમાં હાલ તાઈ બિજલીરા 6 કરોડો બત્તા સ્માર્ટ મીટર લગાતિયા ચ્યા હૈ. બ્રિક્સ દેશારા નુમાઇંદારી આ મીટિંગ કાલી ફેલા. साल 1975 में देश में लगाई चिया आपातकाल रिवर्स कांट रहे मौके आज लोकतंत्र सेनानिया ने नमन करी चियो. ये मौके राजधानी जयपुर में ही लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी चियो. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही कार्यक्रम में शामिल थिया. ये मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानिया री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो. वह कहो का ईसा गई लोकतंत्र सेनानिया ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला.
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया. अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं. आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे.
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर माए अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो. कलेक्ट्रेट परिसर माए बनाई जाई भवन माए राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो. ये मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी. वे कहो कि देश माए दंड संहिता ने न्याय संहिता माए बदलनो न्याय देवण रो काम तेज और आसान भियो है. लोकसभा अध्यक्ष कहो कि समाज रा गरीब तबकारी जनता ने टेम सर न्याय दिरावण माथे अभियोजन रो खास ध्यान है.
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा. क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है.
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान पीटीईटी परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है. इनु राज्य रा 900 बत्ता बीएड कॉलेज में दाखिला दिया जावेला. उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर में वीएमओयू रा क्षेत्रीय कार्यालय नतीजा जारी कीना. इ मौके वे अव्वल रहा विद्यार्थियों ने फोन कर बधाई दीनी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ही 10वीं और 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर राज शिक्षा संकुल नतीजा जारी कीना. अप्रैल मई 2026 माए वी ई परीक्षा माए करीब 83 लाख विद्यार्थी बैठिया. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल री सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बतायो कि ओपन स्कूल नियमित स्कूल शिक्षा हासिल नहीं कर सकया विद्यार्थियों ने पढ़ाई करावन रा मकसद नो काम करे है. वह कहो कि ओपन स्कूल छोड़ देवन वाला बच्चा री तादाद कम करण माए मददगार साबित हो रहा है. अरुणा शर्मा कहो कि ऑन डिमांड परीक्षा करावन रा हलका माए स्टेट ओपन बोर्ड देश माए अव्वल रहो है.
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है. अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है. प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी. तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है. तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे.
0: शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां मांगी है. अर्जियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मथे 10 जुलाई ताई दाखिल करी जा सके है. स्कूल शिक्षा रा हलका माए बेहतरीन काम नुआ काम और समर्पण रो दर्शाव करण वाला अध्यापका ने हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा जावे है. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पाली जिला रा सादड़ी माए राखी जिया एक धार्मिक कार्यक्रम माए संता और गौ रक्षा आंदोलन रबारा माए विचार बताया. इन पाछे वे राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ किला माए महाराणा प्रताप रा जन्म रिठौड़ी देखी. श्री बागड़े अहलकारा ने किला माए आवन वाला सैलानिया सारू सुबिता बधावा

0: हुकम दीना ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर कना कुंदनपुरा गांव में देश रो पहलो आधुनिक एग्री पीवी प्लांट लगाईचियो है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इनरो उद्घाटन कीनो। पीएम कुसुम योजना रा तहत 600 किलोवोल्ट बूता वाला ई मॉडल किसान सूरज री रोशनी बिजली बनावन सागे आसानी साखा ले सकेला। ई मौके श्री नागर कहो की नवी तकनीक माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ऊंची लगाई जावे है जिनों किसान बिजली पैदा करने अतिरिक्त आमदनी सागे साखा ले सकेला।
1: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली

0: ई मॉडलों किसान सूरज री रोशनियों बिजली बनावन सागे आसानियों साखां ले सकेला। ई मौके श्री नागर कहो क ई नवी तकनीक माए सूरज री रोशनियों बिजली बनावन री मशीना ऊंची लगाई जावे है, जिनो किसान बिजली पैदा करनो अतिरिक्त आमदनी सागे साखां ले सकेला।
1: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है, और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
0: राज्य में बीजा ने प्रमाणित करण रो काम और साफ कोई सागे और किसान अनुकूल बनायो चावेला। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था रा संचालन मंडल री आज जयपुर माई भी मीटिंग माई ओ फैसलो करीचियो। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल री सदारत माइफी मीटिंग माए बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच ने एक सागे चलावन रो फैसलो करीचियो। इस सागे बीज प्रमाणीकरण सारू लागू क्रॉप कैलेंडर माए जरूरी बदलाव रो फैसलो ये करीचियो। अरब मौसम चौमासारी बिरखा सरू फेवणु पहली राज्य में आवता 4-5 दिन ताई कठे कठे गरज चमक सागे जोरदार बायरो बाजण और बरसात फेवण रा आसार है। आवता महीना रा पहला सप्ताह माए प्रदेश रा कई हलका माए बिरखा बधबा रा आसार है। ये बीचे आज दोपहरा पाछे राजधानी जयपुर माए आंधी चालन सागे करीब 1.5 घंटा ताई झमाझम में बरसियो, जिणु कई ठोणा पानी फरक्यो। कोटपुतली बहरोड में ही आंधी चालन सागे छाटो छिड़को भियो। काल भरतपुर नागौर सीकर चूरू और श्रीगंगानगर रा कुछ हलका माए 1-1 इंच और मोमबत्ती बिरखा भी। निर्जला ग्यारस रे मौके आज आखा राज्य में जात्रु दान पुण्य कीना। न्यारी न्यारी ठोड़ा सामाजिक संगठन और दूजा लोगों ने ओरों 26 लगार राहगीरा ने ठंडो पैचियो। निर्जला ग्यारस ने जल सेवा रो खास महत्व मान्यो जावे है। दूजी गानी मुहर्रम काल मनायो जावेला। ओ इस्लाम नुआ साल रा 10वां दिन आशूरा ने मनायो जावे है। करबलारी जंग माए हजरत इमाम हुसैन और मारा साथियां रे शहादत री याद माए ओ दिन अकीदत सागे गमगीन माहौल माए मनायो जावे है। ये मौके ताजे आई निकालिया जावे है। राजधानी जयपुर माए मुहर्रम रे मौके छोटा मोटा करीब 300 ताजियां रो जुलूस निकालियो जावेला। ताजिया मोड़ी रात करबला मैदान माए सुपुर्द खाक करिया जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुहर्रम शांति सागे मनावन री अरज कीनी है। वेस्ट जॉन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होड़ माए पाली रा गिरीश रल सोनारो और राहुल बारेसा कांसारो तमगो जीतियो है। आ होड़ छत्तीसगढ़ रा बालोद माए भी ही। देश माए पोलियो री बीमारी न जड़ खत्म करन रा मकसद चलाया जा रहा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रा तहत 28 जून दीतवार ने 5 साल ताईं रा बच्चा ने पोलियो बचाव री दवा री खुराक पाई जावेला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब राज्य रा सगला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र और खास तौर बनाई जिया पोलियो बूथा मथे आ खुराक पाई जावेला। दीतवार ने दवाई नी पीवन वाला बच्चा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार आ खुराक पावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। नंबर ओ जू सुन ले रहा सा 1-800-117-800। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा। भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास और नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन

0: शर्मा लोकतंत्र सेनानी आरी हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रॉयल आंटी नो। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन की नो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली रे हलचल चालती रहवण रो अनुमान। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: Seema from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those 5 specialist bowling options and Shefali Verma, of course, also as a backup.
2: Yes, and in this match, Bangladesh has won the toss, so that's why Ballebazi has decided that in the first pari, there is a little bit of help for Ballebazi. There are cracks in the pitch, and there is a hope that they can increase a little bit. In the second pari, there is a little bit भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश की कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा। लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है। पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को, 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा। हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पर है।

0: प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी या तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था

0: मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हारमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चढ़नी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue high

0: फ्लाइट तो पहुंची और फिर खेल दिया अपने सीधे बल्ले से ठीक सामने की तरफ। शेफाली वर्मा का एक और शानदार चौका, ये उनकी पारी का छठा चौका और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार गेंदे अभी तक इस ओवर में हुई है शानजीदा के, दो गेंदे अभी भी बची हुई, कुल मिलाकर 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर से लॉब किया इस गेंद को उसी दिशा में, फिर से 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: दो लगातार चौके दे बायन।
2: एब्सोल्युटली एंड टेकिंग।

बीजू बारा फिल्म आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों को, और ये जब सुने सौदागर फिल्म का गीत, स्वर है मन्ना डे का।

सर्वाइवर फिल्म आप सुन रही थी मन्ना डे को, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में मुकेश की आवाज में ससुराल फिल्म का ये गीत।

0: मुकेश के गाए ससुराल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement is...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है।

0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नीनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed